0: मैं सुनना ही नहीं, बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल
1: मतलब
0: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
2: विजिट फन पिज्जा किचन FPK@colony इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन। 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co. Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
3: हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं वेट कर रहा हूँ सुहेल साहब के एक और फेवरेट गाने को प्ले करने का। सो हियर यू गो सुहेल साहब, दिस वन इज गोइंग आउट डेडिकेटेडली फॉर यू।

हाँ जी, सैटरडे की शाम हुआ चाहता है डिनर का टाइम। और बात करते हैं देसी मंडी की, विच इज लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सास। एंड एवरी ऑलमोस्ट एवरी डे दे आर ऑफरिंग समथिंग बाय वन गेट वन। लाइक जैसे मंडे और वेनसडे दे हैव बिरयानी एंड नूडल बाय वन गेट वन फ्री। ट्यूजडे एंड थर्सडे दे हैव डोसा एंड चाट बाय वन गेट वन फ्री। सो प्लीज कॉन्टेक्ट दैम इन लुइसविल देसी मंडी एंड हैव द बेस्ट डे फ्लेवर इन टाउन। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बादशाह का एक बहुत ही प्यारा सा गाना प्ले करते हैं।

डिलटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यू तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: She's living it up. She don't give a f-
1: दोस्तों यारों, मेरे शो का टाइम निकलता जा रहा है और अगर आप अपने फेवरेट गाने प्ले करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि मैं स्टूडियो में खासा बोर हो रहा हूँ। और जब तक के लिए मेरी प्लेलिस्ट बर्दाश्त कीजिए।

रात पड़ी है मस्तानी और क्या बताऊं, बड़ी खूबसूरत आवाज में सैयद एहसन साहब ने कॉल किया और अदनान समी का एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत गाना रिक्वेस्ट किया है। तो एहसन साहब, दिस वन इज डेडिकेटेडली गोइंग आउट फॉर यू।

अच्छा ज्ञानसमी के इस गाने के साथ कुछ याद आया तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कहीं सुना था कि जब भी ऊपर वाले से मांगो तो पैसा नहीं, अच्छा नसीब या अच्छा मुकद्दर मांगना, क्योंकि मुकद्दर वाले के आगे कोई नहीं झुकता, मगर पैसे वाले अच्छे मुकद्दर वालों के आगे, अच्छे नसीब वालों के आगे जरूर झुकते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा बीट आपके लिए।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: सब कुछ साफ रख सकते हो
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
2: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
11: हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
12: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फनएशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Amreen at 214-909-6601
2: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
12: Amreen Salon, style that moves with you.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

हाँ जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शो का रह गया आखिरी आधा घंटा और निकिता ने कॉल करके कहा था दिलबर दिलबर के लिए, सो दिस वन इज गोइंग आउट फॉर यू निकिता।

अच्छा दोस्तों, आपको बताता चलूं, आई लव द फैक्ट कि हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स हैं और वो हमें कई दफा फोन करते हैं और बहुत सारे गाने रिक्वेस्ट करते हैं, विच इज वाई आई एम हेयर। तो मरियम एंड सोहेल, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप जितनी दफा कॉल करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उतनी बार आपका फेवरेट गाना प्ले करूं।

हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुनून ग्रुप की। एक बहुत ही फेमस बैंड था जो अब पता नहीं कहाँ है, मगर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अभी हितेन साहब ने कॉल किया एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू वन ऑफ देयर सॉन्ग्स जिसका नाम था सयोनी। आई बिलीव ये 90s के एंड कर्व की बात है जब ये गाना लॉन्च हुआ था। मैं तो काफ़ी छोटा था, मगर जिस जिसको याद है उसके लिए ये गाना।

हाँ जी, सयोनी जुनून ग्रुप का गाना जो कि हितेश साहब ने ऑर्डर किया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिक्वेस्ट। मुझे ये गाना खुद बहुत पसंद है और जब भी मैंने बड़े मज़े से सुना और एंजॉय किया। अगर आपको अभी भी कोई अपना फेवरेट गाना सुनना है तो प्लीज़ कॉल कीजिए हमारे नंबर पे 972-235-5555 और बताइए मैं आपके लिए क्या प्ले कर सकता हूँ। बात ही करते हैं मुरानो कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग की, जो कि आपका घर रीमॉडल कर सकते हैं। बात हो लैंडस्केपिंग की, पेंटिंग की, रीमॉडलिंग योर फर्नीचर, रीमॉडलिंग योर कारपेट, किचन, बाथरूम और एनीथिंग। कॉल देम ऑन 4699701547 और जब तक के लिए

अच्छा जी, जुनून के गाने के प्ले करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कॉल्स आई हैं स्टूडियो में, और सोफिया कहती हैं कि जुनून वॉज एन अमेजिंग बैंड बैक देयर। आई डोंट नो वो लोग कहाँ चले गए और लोग उनके फ्लेवर से अभी तक मुतारिफ क्यों नहीं है, मगर शी रिक्वेस्टेड मी टू प्ले सांवल फ्रॉम जुनून। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक बाई दिस ग्रुप। सो अगर आपको ये गाना कैसा लगता है प्लीज मुझे कॉल करके बताइएगा। मेरा नंबर है 9722355555।

हाँ जी, ये थे जुनून, और अब चलते हैं जलपरी की तरफ। सैरा ने रिक्वेस्ट किया है मैं तेरी आंखों में फ्रॉम जलपरी। मान लो दोस्तों, ये मेरे भी फेवरेट सॉन्ग्स हैं, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी दिनों से ये ट्रैक्स नहीं सुने, और बड़ा मजा आ रहा है आज इन सारे सॉन्ग्स को रिकॉल करते हुए।

अच्छा जी, जल के इसी गाने के साथ आपको बताता चलूं कि ये मेरे इस शो के आखिरी 10 मिनट हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी स्टूडियो में, इसी स्टेशन पर, शाम के 6 बजे। जब तक के लिए मेरे फेवरेट गाने सुनिए। अगर मेरा शो कैसा लगता है रेटिंग के लिए आप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9452169116 पे, और अपना पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए आप फीडबैक देना चाहते हैं तो बेझिझक होके, बेहिसाब होके आप वो फीडबैक दे सकते हैं।

और बताता चलूं कि अगर आप अपने हमारे अपनी फीडबैक देना चाहते हैं हमारे शो के बारे में, तो यू कैन कॉल और यू कैन टेक्स्ट ऑन द नंबर 9452169116। अगेन 9452169116। हमारा शो अच्छा है, बुरा है, इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली जगह है, और क्या कर सकते हैं हम इम्प्रूव, बेहिसाब होकर टेक्स्ट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके टेक्स्ट की रिस्पेक्ट करके वही चीज़ें अडॉप्ट करें अपने शो में।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
4: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
3: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
4: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
3: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: Spreading love and understanding with best music.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mix veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar, rich, bold, no compromises.
6: Isiliye tandoori flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit tandoori flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
8: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
9: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
10: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स. दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स. साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट. तो इस बार डिले क्यों? कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com. ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स. प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो.
11: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे. 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.

0: को चुराए। My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव बाय डैलस।
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग सफा गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी।
5: सब कुछ साफ रख सकते हो,
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती। कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
8: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
9: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
10: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Pan Asia.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
0: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
2: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
3: Brought to you by Club Fun Asia.

ताली चलते प्यार सोनिए ताली चलते प्यार ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए ताली चलते प्यार।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
5: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं, बताया ना जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है, सिंपल।
4: मतलब
5: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
0: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in.
6: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Phanasia.
1: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Phanasia.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: आई नी तेरा सूट भी, आई नी तेरी साड़ी भी, आई नी तेरा लहंगा, तेरी ड्रेस ते तेरा कोका डिजाइन।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं।
5: Astrology readings for guidance only and results may vary.
6: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
6: हेलो गाइस, दिस इज मी किंजल दवे एंड यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग फन एशिया रेडियो।
7: आओगे न दिन ढले सताओगे न रात की नशीली बाय से नींद

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.
2: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
3: ऐसी जगह।
4: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
5: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
4: अरे

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, 24 कैरेट

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: 104.9 FM Funisha. Fun Fana Fun Done.
1: Yo, Karinojla, Abby.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जाएगा ना बिलो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
8: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुनी रानी नी ठाट बाट देख किंग दे तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंह दे।

0: छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: बदराम वाट लगे रे पोरे।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: मैजिक टच।

0: गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
1: मैजिक टच।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। A very good morning to all the listeners of Sunday Gupshup on 104.9 FM Fanesia Radio. मैं हूँ आपकी होस्ट RJ एकरूप, आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक ये शो आता है जिसका नाम संडे गपशप। संडे को मैं यहाँ पर आपसे मिलती हूँ, और हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 972-235-5555। आप इस फ़ोन कॉल इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें और मुझे बताएं कि आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। दिस इज़ RJ एकरूप। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हफ्ते में एक दिन के लिए आती हूँ यहाँ पर।

वीकेंड पर संडे जो सुबह सुबह है आपका दिन और मेरा दिन इसी शो के साथ और फनीजा की फ्रीक्वेंसी के साथ ही शुरू होता है 9722355555 और इस शो की फ्रीक्वेंसी है 104.9 FM फनीजा रेडियो। आप मोस्टली कार्स में हमारे साथ जुड़ते हैं, रादर हम आपके साथ आपकी कार्स में जुड़ते हैं एंड फॉर क्वाइट मैनी लिसनर्स ऑल्सो जो कि रेडियो जिनका घर पे होता है या वो अपने स्मार्ट डिवाइसेस के साथ हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो आप सबको भी थैंक यू सो मच। आपके फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह, बस कहने की देर होती है कि आप मुझे कॉल कर लीजिए एंड आपकी पार्टिसिपेशन, आपका योगदान इस शो में, हमारे इस फ्रीक्वेंसी, हमारे इस रेडियो के परिवार में जो आपका योगदान है वो तो बहुत ही अमूल्य यानी कि वैल्यूएबल है। सो शुक्रिया आप सबका। शो का आगाज करेंगे इस गीत के साथ।

आंखें ये 1968 की इतनी पॉपुलर फिल्म पॉपुलर इसलिए हुई थी बिकॉज इसमें जो है द ही मैन ऑफ बॉलीवुड और जिनको मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जाता है, हैंड्स डाउन इनसे और ज़्यादा हैंडसम कोई भी एक्टर अभी तक नहीं आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन धर्मेंद्र। जी हाँ, माला सिन्हा जी भी थी इस फिल्म में। रामानंद सागर जो कि रामायण आगे चलकर जिन्होंने 80s में रामायण बनाई थी उसके लिए बहुत पॉपुलर हुए थे। एंड रामानंद सागर जो हैं जस्ट एज अ डायरेक्टर भी बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। उनकी जो पूरी टीम थी, उनका जो पूरा क्रू था जो उनके साथ हमेशा काम करता था, वो बहुत ही इफ़िशेंट एंड वेरी पॉपुलर फिल्में जो हैं उन्होंने बनाई थी। स्पाई थ्रिलर फिल्म आंखें एंड उसी का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे। रवि का म्यूज़िक, साहिर लुधियानवी के लिरिक्स, बहुत ही बेहतरीन लिरिक्स एंड ये जो है आवाज़ लता जी की। हमारी एक लिसनर हैं टुडे, आई डेफिनेटली फील वेरी ऑनर्ड क्योंकि हमारी जो लिसनर हैं वो कहती हैं कि आज उन्होंने सबसे पहली बार फनीजिया के किसी भी शो को कॉल किया है। एंड शी पिक्ड मी फॉर अ कॉल। बहुत सालों से वो हमेशा सुनती आ रही हैं, सुनती हैं हमारे शोज फनीजिया को, लेकिन उन्होंने इस मेरे शो पर कॉल किया। एंड शी सेड कि सिर्फ मैं आप ही को कॉल कर रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि वो जो है शो कितना एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने अपना नाम बताया अज़मीना जी, एंड शी हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर टू सॉन्ग्स। सो आई प्रॉमिस्ड कि मैं बैक टू बैक वो दोनों सॉन्ग्स प्ले करूँगी। कोइंसिडेंटली दोनों ही सॉन्ग्स जो हैं जया भादुरी यानी कि जया बच्चन जी की फिल्मों का के हैं, उन्हीं पर फिल्माए गए हैं।

वेलकम बैक. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आप सबका स्वागत करती हूं एक बार फिर से. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है जिसका नाम संडे गपशप 104.9 एफएम फनीशा रेडियो की फ्रीक्वेंसी और 972-235-5555 है इस स्टूडियो का फोन नंबर. थैंक यू सो मच, आप लोग सब जुड़े हुए हैं, सब हमारे इस शो के साथ बने हुए हैं. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये शो आता है. एवरी मॉर्निंग ब्रिंग्स अ न्यू लाइट, अ न्यू ड्रीम एंड शोज अ न्यू वे टू फुलफिल योर ड्रीम्स.

अनोखी रात का ये बहुत ही अच्छा सा गीत जो मुकेश साहब ने गाया हुआ है संजीव कुमार जी पर फिल्माया गया और टोंगे पर ये गीत गा रहे हैं, इसमें मुकरी भी नजर आ रहे हैं। Dream Home Mortgage has been helping families achieve home ownership since 1998. They are licensed in all 50 states. Their expert team delivers stress-free, tailored mortgage solutions. Make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. You can call Hussain Panjwani at 972-245-5626 or you can visit his website, which is dreamhomemortgage.com.

जीवन ऐसा भागता रहता है, टाइम जस्ट फ्लाइज क्विकली, और जीवन जो है चलता रहता है। ये ही इस सॉन्ग में इतना अच्छा गाया है, मैसेज यही है। महेंद्र कपूर एंड मन्ना डे दोनों ये जो सिंगर्स हैं, इतना अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, जीवन में बस आगे बढ़ते रहिए, चाहे कैसा भी टाइम हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, जीवन का नाम है आगे बढ़ते रहना। और आगे तो टाइम ऐसे बढ़ रहा है, वी आर ऑलरेडी इन द 5th मंथ, आज मई 3rd है, पहला संडे है इस 5वें महीने का। दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ दिस न्यू ईयर, जो अभी तो आया था, 2026 अभी तो शुरू हुआ था, एंड वी आर ऑलरेडी इन द 5th मंथ ऑफ द ईयर। इस महीने में 5 संडेज हैं, एक संडे तो ऐसा है जब लॉन्ग वीकेंड है, यानी कि उस संडे के बाद जो मंडे आएगा उस दिन छुट्टी है, मेमोरियल डे विच इज़ ऑन द 25th ऑफ दिस मंथ, तो वो लॉन्ग वीकेंड है। मई में आता है एक लॉन्ग वीकेंड, एंड देन आई थिंक उसके बाद जो नेक्स्ट वाला लॉन्ग वीकेंड होगा वो जुलाई 4th। वैसे जूनटीन्थ की भी कहीं कहीं छुट्टियां होती हैं, नॉट एवरी इंडस्ट्री, नॉट एवरी कंपनी क्लोजेज फॉर जूनटीन्थ। सो एनी वे, जो इसके बाद जो नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड आएगा, फॉर श्योर फॉर एवरीबडी, फॉर द इंटायर कंट्री, वो होगा जुलाई 4th। 972-235-5555 है हमारे इस स्टूडियो का फ़ोन नंबर। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की है।

इतनी स्टार स्टडेड ये फिल्म कालिया जो आई थी 1981 में, एंड इसमें कालिया का जो टाइटल रोल प्ले किया था वो अमिताभ बच्चन जी ने प्ले किया था. उनका नाम ही इस फिल्म में कालिया था और फिल्म का नाम भी कालिया ही था. आशा पारेख जी भी नज़र आ रही हैं और परवीन बाबी, जिनके साथ तो खैर ये डुएट चल रहा है. इतना सुंदर सॉन्ग जो है ये आशा भोंसले एंड आई थिंक किशोर कुमार जी, हाँ किशोर कुमार साहब की आवाज़ है. सो ये दोनों इतने अच्छे सिंगर्स और इतने अच्छे दो एक्टर्स के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग. इसमें जो है कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बहुत सारे थे. कादर खान साहब जो कि अपने टाइम पे इतने पॉपुलर थे, फिर देन सडनली पता नहीं कहाँ चले गए. ही इज़ कम्प्लीटली मिसिंग इन एक्शन, नोबडी नोज़ वेयर ही इज़. बट जब तक वो इंडस्ट्री में एक्टिव थे तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था. ऑल्दो मोस्ट ऑफ हिज रोल्स वर नेगेटिव, मोस्ट ऑफ हिज रोल्स वर वेरी कनाइविंग, स्केची रोल्स प्ले करते थे, लेकिन जो भी है अच्छा काम करते थे. अमजद खान भी थे. अमजद खान एंड अमिताभ बच्चन की तो जो दोस्ती है, यारी दोस्ती है, वो बहुत गहरी थी. काफ़ी सारे इकट्ठे फिल्मों में उन्होंने काम किया था, काफ़ी सारी फिल्मों में इकट्ठा उन्होंने काम किया था. प्राण साहब, ओ माई गॉड, उनके बगैर तो कोई फिल्म होती ही नहीं थी. वही सिगार लेकर और अपना थ्री पीस सूट पहनकर इतने डैशिंग और इतने वो लुक्स देते थे, तिरछी नज़रों से देखते थे सबको. सो जब भी उन पे कैमरा आ जाता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सा ही एक्सप्रेशन, कुछ सस्पेंस वाला एक्सप्रेशन होता था उनके फेस पे. के एन सिंह मुराद जो कि रज़ा मुराद के फादर हैं, और उन्होंने तो जस्ट इंडिविजुअली 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है. जीनत अमान उनकी नीस हैं, सो दे आर अ फैमिली. रज़ा मुराद उनके बेटे, सो इनका खुद का नाम मुराद. वैसे तो हामिद अली खान मुराद, लेकिन फिल्मों में मुराद के नाम से जाने जाते थे. एंड इतने अच्छे कैरेक्टर एक्टर थे वो, एंड 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया. पॉपुलर थे, ही वुड बी सीन इन द रोल ऑफ ईदर अ फादर, अ पुलिस ऑफिसर, जज, या फिर कोई शहनशाह बादशाह टाइप रोल्स करते थे. सो ये सभी एक्टर्स इस फिल्म में, एंड दे ऑल मेड अप टू कम, दे ऑल केम टुगेदर टू मेक अ फिल्म कॉल्ड कालिया, और कालिया का ही हम ये सॉन्ग सुन रहे थे. थैंक यू सो मच जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की, बहुत अच्छा सॉन्ग. एंड 9722355555 है हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर. आपको मैं याद करवाती रहती हूँ ताकि आप मुझे यहाँ पर कॉल करके बताते रहें कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे. फॉर राइट नाउ इट इज़ शर्मीली.

ये शर्मिली जो हैं राखी गुलजार, वल राखी के नाम से ही जानी जाती थी। इनका एक ही नाम था, इन्होंने कभी अपना लास्ट नेम ऐसे यूज़ नहीं किया। वैसे तो राखी इनका जो है लास्ट नेम मेडम मेडन मजुमदार था, लेकिन राखी जस्ट अ सिंगल नेम इज़ हाउ शी यूज़ टू अपियर इन द मूवीज़। आगे चलकर इन्होंने गुलजार साहब से शादी की और फिर इनकी बेटी मेघना गुलजार, जो इतनी अच्छी वेल नोन डायरेक्टर हैं। राखी जी का करियर जो है बहुत यंग एज पर शुरू हुआ था। इन्होंने जो है मेनली हिंदी एंड बंगाली फिल्मों में काम किया एंड 70s और 80s की काफ़ी लीडिंग ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस रहीं, और इनको जो है नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। पद्मश्री से भी नवाजा गया है और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं। बहुत अच्छा काम करती थी, ऑफकोर्स शी वॉज सो ब्यूटिफुल, स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी दिखती थी। एंड 67 में एक फिल्म आई थी, उससे इन्होंने अपने जो है शुरुआत की थी बंगाली फिल्मों के ज़रिए। और फिर जो इनकी सबसे पहली हिंदी फिल्म आई जीवन मृत्यु, जो 1970 में आई थी। ब्रेक पर जाने से पहले अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सा छोटा सा कोई गीत लगाऊं आपके लिए। जी हाँ, कोई जो है किसी मूवी का, मतलब ऐसा सच कोई गीत ना हो जो आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो चलिए, एक ये सॉन्ग है जो सुन लेते हैं, देन ब्रेक के बाद आके रिज्यूम करेंगे।

0: मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठ जाता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
7: ओह हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
10: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
11: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
10: सच में बिल्कुल घर जैसा।
11: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County, May 15th is your last day this year. Bezit.co.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: ओए की दसा तेनु, मैंने नवे सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद है जो एक दूजे दे नाल काम ना करे।
14: मचा, आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ऐसे।
15: मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी प्राइवेसी का कोई चिंता नहीं बाबा।
16: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। कॉमन एक, सॉफ्टवेयर एक। Zoho One, get your free trial at zoho.com/one.
8: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
17: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

वेलकम बैक. यू आर ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. मैं हूं आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आपका स्वागत करती हूं. और शो का एक घंटा हो गया है, दो घंटे और बचे हुए हैं. इस दौरान बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपकी चॉइस के मैं यहां पर प्ले कर रही हूं. एंड आप जो है यहां पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. अगला गीत जिसकी फरमाइश आई हुई है वो ये वाला सॉन्ग है. हमारे

यहाँ पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप। 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। अगला गीत जिसकी फरमाइश आई हुई है वो ये वाला सॉन्ग है। हमारे लिसनर जो ना दो गीतों की फरमाइशें करते हैं, एंड आज भी उन्होंने दो गीत मुझे बताए हैं जो कि मैं बैक टू बैक प्ले कर दूंगी। एंड देन ऑफ कोर्स आई एम लाइनिंग अप ऑल द सॉन्ग्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग your calls off air.

9722355555 है स्टूडियो का फोन नंबर, और हमारे सेम लिसनर की तरफ से ये वाला जो सॉन्ग है इसकी रिक्वेस्ट किशोर कुमार साहब की आवाज में।

हमारे एक लिसनर हैं जो राइट नाउ अभी जो है फिलहाल दे आर ड्राइविंग टू ऑस्टिन इज़ व्हाट आई हर्ड, एंड दे सेड कि जब तक इसका सिग्नल आता रहेगा फनीशा का तब तक वो हमारे इस रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहेंगे. एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो है सॉन्ग्स मल्टीपल जो है वो सॉन्ग्स की चॉइस देंगे. वो और उनकी वाइफ ऑस्टिन की तरफ ड्राइव कर रहे हैं. सो उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन आई थिंक उनकी वाइफ का नाम है दीपमाला. तो वो दोनों जो है ये वाला इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो मैं अभी प्ले करने वाली हूँ. एंड दिस सॉन्ग इज़ सो न्यू, सो फ्रेश, इन द सेंस कि ये जो फिल्म है अभी कुछ 1-2 महीने पुरानी फिल्म है. लास्ट ईयर के एंड में आई थी दिसंबर में, एंड देन फिर उसका सीक्वल आया अभी मार्च में. तो मैं वैसे ही हंस रही थी, मैंने कहा कि आपने तो मेरे इस शो का बिल्कुल ना रुख बिल्कुल ही बदल दिया इस सॉन्ग के साथ. लेकिन जो है आपकी ख्वाहिश जो है हम मेरे इस शो पर मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी हो. तो ये लीजिए, आई कैन नॉट से नो टू यू, धुरंधर का ये वाला गाना है गहरा हुआ.

रिसेंटली सुपर हिट फिल्म धुरंधर का ये सॉन्ग हम सुन रहे थे. हमारे लिसनर जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन उनकी वाइफ का नाम दीपमाला, उनकी चॉइस का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे. अगर वेदर की बात करें, वो वी लिव इन टेक्सास, तो टेक्सास का जो वेदर है ना उसका कुछ पता ही नहीं चलता. कभी सर्दी हो जाती, कभी गर्मी हो जाती, कभी बहुत सर्दी हो जाती, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बारिश आने लग जाती है, कभी हेल्स आ जाते हैं, कभी टॉर्नेडोज की वार्निंग आ जाती है. सो द वेदर जस्ट कीप्स अस ऑन आवर टोज एंड बिजी द होल टाइम. आज जो है वेदर क्वाइट कंसिस्टेंट होने वाला है. ह्यूमिडिटी लेवल इज़ अबाउट 69%. जो है बारिश तो नहीं है, धूप अच्छा सन है, अच्छी बारिश, धूप अच्छी धूप है आज. 83 इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वुड बी अराउंड 55-58. तो ऐसे रहने वाला है आज का टेम्परेचर. आप इंजॉय करें, संडे है, दिन की शुरुआत मुझे पता है आपकी बहुत अच्छी होती है, मेरी तो बहुत अच्छी हो जाती है बिकॉज़ मेरी जो संडे है वो यहाँ से शुरू होता है आपके साथ, फनीजा के साथ. तो माई संडे ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन सच अ ब्राइट नोट एंड होपफुली आपका भी ऐसा ही हो. बाकी जो रेस्ट ऑफ द डे है वो आप अच्छा वेदर है तो इन्जॉय कीजिए. एंड अगेन दिस इज़ अराउंड मिकेनी बिकॉज द स्टूडियो इज़ इन मिकेनी, सो मैं आपको मिकेनी के अराउंड जो एरिया है वहाँ का टेम्परेचर बता रही हूँ. कल पार्टली क्लाउडी, ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे इज़ कम्प्लीटली क्लाउडी, देर इज़ नो साइन ऑफ सन बींग आउट. थोड़ा जो है फ्राइडे को फिर थोड़ा धूप थोड़ी छाँव होगा. सैटरडे एंड संडे टू व्हाट इट शोज राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी रेनी. सो ये वाला जो आज जो दिन है, आज जो संडे है, उसको एंजॉय करें. वेदर इज़ रियली प्रिटी, गो आउट, हैव फन एंड एंजॉय द सन. दिस वेदर अपडेट हैज़ बिन ब्रॉट टू यू बाय मालाबार. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स दैट आर लोकेटेड इन फ्रिस्को, डू चेक आउट देयर वेरी शाइनी वेरी ब्राइट शोरूम. बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है एंड इट इज़ ऑल गोल्ड. डायमंड की कलेक्शन भी है लेकिन इनका जो गोल्ड है वो तो बहुत ही कमाल का है. सो डू चेक इट आउट, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. एंड दिस वेदर अपडेट दैट आई ब्रॉट टू यू इज़ ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. हमारे एक लिसनर है जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है. आई प्रॉमिस जो एज ऑफ द सॉन्ग्स है वो बढ़ती रहती है एज वी गो टूवर्ड्स 9, 9:30, 10. तो जो है सॉन्ग्स जो है अभी हम धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ मैं. तो ये वाला जो सॉन्ग है ये 70s का है, राजेश खन्ना की बहुत ही पॉपुलर फिल्म. हमारे लिसनर जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की.

0: Immigration attorneys in the DFW area, if you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: बावर्ची बिरयानीज इन प्लेनो बिगर बेटर एंड द बेस्ट नाउ सर्विंग एवरीडे लंच स्पेशल्स, थालीज, बिरयानी कॉम्बोज एंड रिफ्रेशिंग ईरानी चाय विद डिलीशियस इंडियन स्नैक्स, फ्रेशली मेड स्वीट्स एंड बेकरी आइटम्स। प्लीज वॉक इन टू बावर्ची प्लेनो और विजिट bawarchiplano.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
10: Front पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से, सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।

वेलकम बैक. आप 104.9 FM फनीशा सुन रहे हैं. 972-235-5555 और मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एक रूप. आपका स्वागत करती हूँ. नया दिन है, नया शो है, नई उम्मीदें हैं और नई होप्स हैं. बस इसी को कहते हैं जीवन. रात गई, बात गई, कल का कल की तरफ छोड़ दीजिए. आंखें आगे होती हैं तो आगे देखिए. एंड चेंज इज़ नेसेसरी, मूविंग फॉरवर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. तभी जो है एक ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस होती है अगर आगे चाहे बेबी स्टेप्स ही लें लेकिन जो है चलते रहें. आज को सुंदर बनाएं, टुमारो कल, आने वाला कल अपने आप सुंदर हो जाएगा. अगर जो है ड्रीम्स पूरे करने हैं तो फिर कड़ी मेहनत को उसका साथी तो बनाना ही पड़ता है. वेर एवर देर इज़ अ डिज़ायर, वेन एवर देर इज़ अ डिज़ायर टू अचीव ड्रीम्स, there has to be the hard work, there has to be its favorite companion, which is hard work. Hard work के बगैर dreams का पूरा होना इतना मुमकिन नहीं हो पाता. आज की डेट है May 3rd. इट इज़ द थर्ड डे, फर्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ. परसों May 5th को सिंको डे मायो मनाया जाता है. इट इज़ अ सेलिब्रेशन, इट इज़ अ फिएस्टा, इट इज़ अ पार्टी. तो जो है इस बार सिंको डे मायो ट्यूसडे को आ रहा है. ट्यूसडे को यूजली टाको टर्की भी कहा जाता है. तो डबल, जी हाँ, मैक्सिकन फूड खाने का चांस है. बाकी लाइक आई सेड, May 25th, विच इज़ द लास्ट मंडे ऑफ दिस मंथ, जो है वो लॉन्ग वीकेंड होगा. तो मंडे छुट्टी है 25th को. बाकी इस महीने में 5 संडेज हैं तो मेरे लिए तो बोनस होता है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ 4 टाइम्स आई एम कमिंग हियर 5 टाइम्स. आपके फरमाइशी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को प्ले करने का मुझे एक्स्ट्रा मौका मिल जाता है. आपके साथ बातें होती हैं, एक और एक्स्ट्रा जो है शो करने का टाइम मिल जाता है. सो ये हमारी एक लिसनर है जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है. टाइटल ट्रैक लव इन टोक्यो.

इस मूवी के बाद जो है टोक्यो इतना पॉपुलर हो गया था. दिस इज द मैजिक ऑफ हिंदी मूवीज, जहाँ पर शूटिंग होती है मूवी की और जहाँ पर अगर टाइटल में उनका नाम ऐसे आ जाए, लव इन टोक्यो में सिटी का नाम आ जाए, तो फिर वो सिटी भी बहुत पॉपुलर हो जाती है एंड वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ जाता है. नॉट ओनली द बिजनेस दैट द फिल्म हैज़ ऑलरेडी गिवन दैम वाइल दे वर शूटिंग देयर, वाइल दे वर इन प्रोडक्शन इन दैट सिटी और इन दैट कंट्री, एफ्टरवर्ड्स जो है बहुत लॉन्ग टर्म जो है टूरिज्म पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि स्विट्ज़रलैंड डेफिनेटली, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, इट हैज़ बिन नोन फॉर इट्स नॉन पुरील ब्यूटी एंड जो चार्म है स्विट्ज़रलैंड का. लेकिन जब बॉलीवुड में हम हिंदी मूवी लवर्स ने जब स्विट्ज़रलैंड को शिफॉन साड़ीज़ के थ्रू देखा और स्नो कैप माउंटेन्स को हमने अपनी मूवीज़ के सॉन्ग्स में देखा, तो जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें प्यार हो गया स्विट्ज़रलैंड से या यूरोप से. सो ऐसी सिटीज़, ऐसे प्लेसेस जो हैं हिंदी मूवीज़ की देन हैं. जब वहाँ पर जाते हैं इनकी, वहाँ पे हम उनको बड़े पर्दे पर देखते हैं, तो फिर हमारा मन करता है कि हम एक्चुअली इन पर्सन भी वहाँ पर जाके देखें. एनी वे, दिस सॉन्ग वॉज रिक्वेस्टेड बाई वन ऑफ आवर लिसनर्स जॉय मुखर्जी. इस फिल्म में आशा पारेख, इस फिल्म में महमूद एंड प्राण, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो. 9 बजे की ब्रेक के बाद एज ऑलवेज एज हाउ द कॉन्सेप्ट गोज, 9 o'clock की ब्रेक के बाद मेरे पास एक गिव अवे है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. द गिव अवे इज फ्रॉम देसी मंडी, तो आप सुनते रहें. वैसे तो अभी है टाइम 9 बजने में, बट अप अंटिल देन आई विल बी प्लेइंग सॉन्ग्स ऑफ योर रिक्वेस्ट लाइक ऑलवेज. सो प्लीज कीप द कॉल्स कमिंग इन. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. ये जो अगला सॉन्ग है मुकेश साहब की आवाज़ में, इतना अच्छा सॉन्ग है, लता जी की आवाज़ भी है और फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान.

स्प्रिंग सीजन जो होता है मार्च अप्रैल में, यानी कि मई का जो महीना है वो पीक सीजन है स्प्रिंग के लिए। और अगर अभी भी आप सुनते हैं ना कि बहुत छींकें आ रही हैं, रनी नोज एंड ऑल दैट, तो इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ द एलर्जीज। स्प्रिंग सीजन की एक बस यही सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं ड्रॉबैक है, अगर आपको सीजनल एलर्जीज हैं तो इस सीजन में सबसे ज़्यादा होती हैं। हाउएवर इफ़ यू जस्ट लुक अराउंड द नेचर, तो इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता होती है हमारे अराउंड, इतने फ्लावर्स, इतने ट्रीज, इतनी ग्रीनरी और इतना कलरफुल जो है सारा कुछ हमारे अराउंड होता है। सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग सीजन। मई का जो महीना है वो पीक मंथ होता है स्प्रिंग के लिए। इसके बाद जो जून, जुलाई एंड अगस्त आते हैं, ओ माई गुडनेस, तो फिर आप पूछो मत, इतनी गर्मी हो जाती है कि फिर हम मिस करते हैं कि टेम्परेचर थोड़े से कम हो जाएं। बट ये भी एक ब्यूटी है। समर में तो और इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको एंजॉय किया जा सकता है। ऑफ कोर्स स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो अप अंटिल एटलीस्ट हाई स्कूल जिनको समर की ब्रेक मिलती है, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है। दे गेट टू स्लीप इन, दे गेट टू स्लीप टिल, दे गेट टू स्टे अवेक टिल लेट नाइट। और सुबह तो क्या उठना, दोपहर ही हो जाती है जब तक उठते हैं 12-1 बजे। सो ये भी एक बड़ा मज़ेदार सा टाइम होता है। इन्जॉय इट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, बिकॉज जब फिर हमारी उम्र तक तो आते आते सुबह मेरा देखो ना, संडे को भी 6:15-6:30 मेरा जो है दिन शुरू हो जाता है, बिकॉज 7 o'clock आई हैव टू बी हियर। सो इन्जॉय फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, इफ़ यू गेट अ चांस टू स्लीप इन, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली मेक फुल यूज़ ऑफ इट। मई का महीना जो है नेशनल स्माइल मंथ भी मनाया जाता है, नॉट इन द US बट इन द UK। और जो है मेमोरियल डे की बात कर ली, सिंको डे मायो एक अनदर फेस्टिव टाइम होता है, डांस लाइक अ चिकन डे विच इज़ ऑन May 14th। और ओ माई गॉड, मैं इतना बड़ा त्यौहार कैसे भूल गई, मदर्स डे जो इस साल May 10th को आ रहा है। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि ऐसे जो अच्छे अच्छे इतने बड़े दिन हैं वो हमेशा संडे को आते हैं, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया। सो ये जो दो इतने सुंदर अवसर आते हैं वो संडे को ही आते हैं। सो आई गेट अ चांस टू विश यू गाइज फर्स्ट हैंड लाइव ऑन एयर आपको मैं विश कर सकती हूँ। सो जी हाँ, मदर्स डे भी आता है मई में। सो मई इज़ फुल ऑफ फन एंड फेस्टिविटीज़। एंड अगर बर्थडेज की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि इतनी पॉपुलर हस्ती रही हैं, वो भी मई के महीने में बॉर्न हुई। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी फेमस प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉन एफ कैनेडी, जिनकी हिस्ट्री डैलस के साथ जुड़ी हुई है, वो भी मई के महीने में ही बॉर्न हुए थे। ये वाला सॉन्ग हैज़ नथिंग टू डू विद मई, लेकिन ये सॉन्ग इतना कैची है, इतना अच्छा म्यूजिक है, इसकी रिक्वेस्ट की है हमारे लिसनर ने।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: इमिग्रेशन पेपर वर्क से परेशान, अब टेंशन छोड़िए। easypetition.com के साथ USCIS पेटिशन फाइल करना हुआ इजी। आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर और फाइल कर सकते हैं पेटिशंस लाइक F1 या B1 चेंज ऑफ स्टेटस, F1 OPT, H4 विद EAD, I-485 और I-485J, N-400 नेचुरलाइजेशन और 200 से भी ज्यादा पेटिशन टाइप्स और प्राइसिंग सिर्फ $30। तो आज ही जाइए easypetition.com पर, easypetition.com।
5: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
6: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
5: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
7: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो।
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
16: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Welcome back. You are tuned into the best radio channel in the US. जी हाँ, फनीशिया रेडियो की फ्रिक्वेंसी के साथ आप जुड़े हुए हैं 104.9 FM फनीशिया रेडियो. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे एकरूप. आपका स्वागत करती हूँ. शो के दो घंटे हो गए हैं, एक घंटा बचा हुआ है और इस एक घंटे में मेरे पास कुछ हमारे स्पॉन्सर्स की भी अनाउंसमेंट्स हैं और देसी मंडी की तरफ से जो गिव अवे है वो भी मैं इसी लास्ट वन आवर ऑफ द शो में देती हूँ, यूजुअली बिफोर 9:30. एंड इसका ये मतलब है कि आप फ़ोन को अपने पास रखें और इफ़ यू स्टिल हैव द ओल्ड स्टाइल फ़ोन इन योर होम तो आप फ़ोन के पास फिर आप आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप फिर कॉल कर सकते हैं एंड देन इफ़ यू हैव द राइट आंसर देन यू गेट अ चांस टू विन अ गिव अवे फ्रॉम देसी मंडी. बट वो मैं सॉन्ग लगाने के बाद पहला जो अभी रिज्यूम करेंगे शो को और जो सॉन्ग मैं लगाऊंगी हैज़ नथिंग टू डू विद द गिव अवे. May 3rd है आज की डेट, 3rd day ऑफ दिस 5th month. ब्यूटिफुल डे, अ न्यू डे, न्यू होप्स, न्यू डिज़ायर्स. एंड जो है अप्रैल भी बहुत अच्छा निकला एंड होपफुली ये आगे आने वाला टाइम, ये वाला मंथ, आगे आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा और खूबसूरत निकल जाए.

ये ऐसी आवाजें हैं जो लगता है कि वाकई सच में माधुरी दीक्षित ही गा रही हैं और सच में सलमान खान ही गा रहे हैं। लगता ही नहीं कि इनको किसी प्लेबैक सिंगर्स ने अपनी आवाजें दी हैं। ऐसा जादू SPB एंड लता जी की आवाजों का। फिल्म का नाम तो आप समझ ही गए होंगे। इट वॉज़ इन द टाइटल, इट वॉज़ इन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल ट्रैक हम आपके हैं कौन, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन का टाइटल ट्रैक। इट वॉज़ जस्ट सो ब्यूटिफुली डन। ये ब्लैक एंड वाइट में है एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द इंटायर मूवी इज़ इन कलर। तो इसको जब हॉल में देखा था और अभी भी अगर आप बिग स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है ये इफेक्ट। हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, लता जी की आवाज़ है, ब्लैक एंड वाइट है और इस एरा में, 90s की एरा में, तो इट वॉज़ सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। वेलकम तो मैं आपका कर ही चुकी हूँ। हमारी एक लिसनर हैं जो हमें एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट एरा की तरफ वापस लेकर जाएंगी। फिल्म का नाम है वो कौन थी, आशा भोसले जी की आवाज़।

0: बताइए, मैं आपको एक ये छोटी सी 10-15 सेकंड्स की क्लिप सुनाने वाली हूँ, एंड आई एम गोना हाइड इट फ्रॉम हियर सो दैट अगर हमारे कोई वीडियो लिसनर्स कॉलर्स हैं व्यूअर्स हैं तो वो ना देख सकें. इट इज़ अ टाइनी क्लिप. आपको वैसे तो फटाफट से ही पता चल जाएगा ये कौन सी मूवी की है और ये कौन कह रहे हैं और किन की रेफरेंस में कह रहे हैं. सो आप मुझे ये सारी जो है इंफॉर्मेशन दे कर जीत सकते हैं देसी मंडी की तरफ से ग्रोसरीज भरी जो है हैम्पर. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. हियर इज द क्लिप.
1: 22 सालों से उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूं, आज उसी इज्जत को अपने कदमों तले रौंद कर घर कैसे जा सकता.
0: अभी मैंने जो है म्यूजिक उसका बिल्कुल म्यूट कर दिया, एब्रप्टली मुझे बंद करनी पड़ी ये क्लिप. बट या दिस इज द डायलॉग. सो लेट्स सी हु द फर्स्ट कॉलर इज एंड इफ दे आर एबल टू गिव मी द राइट आंसर. गुड मॉर्निंग, यू आर लाइव ऑन एयर. पहले आप अपना नाम बताएं.
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज मेघा.
0: मेघा, इत आपके नाम पे मुझे एक गाना याद आ गया,
2: मेघा
0: मेघा रे मेघा श्री देवी का.
2: रे.
0: हाँ ठीक है. सो आप मुझे गिव अवे के लिए कॉल कर रही हैं. यू नो द राइट आंसर.
2: यस.
0: ऑसम.
2: आई बिलीव दिस इज
0: नो
2: शाहरुख खान.
0: नो. हाँ बट नो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. यू शुड नॉट से आई बिलीव.
2: ओके, दिस इज शाहरुख खान फ्रॉम वीर ज़ारा.
0: ऑसम. यस. एंड व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज ही सेइंग ऑल दिस इन?
2: कि वो जेल में इतने साल क्या किस वजह से रहे, जिस वजह से उन जारा का
0: किसकी इज्जत की बात हो रही है? 22 सालों तक में
2: जारा
0: जारा, और जारा का रोल
2: जारा
0: किन्होंने
2: के
0: प्ले किया था?
2: प्रीति जिंटा.
0: प्रीति जिंटा ने. एंड आई थिंक आई रेड इट समवेयर दैट दिस फिल्म, व्हेन दे वर राइटिंग दिस फिल्म, दे हैड ऐश्वर्या राय इन माइंड. कैन यू बिलीव
2: वाओ.
0: ऐश्वर्या राय बींग इन दैट रोल? मुझे तो लगता है प्रीति जिंटा ने इतना अच्छा काम किया, द रोल फॉर जारा इज सो वेल सूटेड फॉर हर.
2: एब्सोल्युटली, यस, आई अग्री.
0: सो आप अपना नाम फिर से बता दीजिए. मेघा. और फिर मैं आपको
2: मेघा. या
0: मेघा पूरा नाम इफ यू वांट टू शेयर, अदरवाइज
2: मेघा अनिल कुमार.
0: मेघा. अनिल कपूर तो नहीं? अनिल कुमार.
2: नहीं, अनिल कुमार.
0: ठीक है, चलिए. यू आर द विनर मेघा अनिल
2: थैंक
0: कुमार.
2: यू.
0: आई एम गोना टेक योर अदर डिटेल्स ऑफ एयर. आपने ये देसी मंडी का गिफ्ट हैम्पर जीत लिया है. एंड आई एम गेटिंग
2: ऑसम,
0: अदर
2: थैंक
0: कॉल.
2: यू.
0: या एंड आई एम गेटिंग अदर कॉल्स ऑल्सो. अगर आप वैसे ही ऑन एयर आकर जवाब देना चाहते हैं तो दैट इज ग्रेट. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. हाउ एवर, वी हैव फाउंड द विनर फॉर टुडेज गिव अवे एंड हर नेम इज मेघा अनिल कुमार. मेघा जी, जस्ट स्टे हियर. आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म दैट हैज़ शाहरुख खान इन इट. बहुत ही क्यूट फिल्म फ्रॉम द 90s. तो ये गाना हम सुनते हैं. आई एम गोना टेक योर डिटेल्स. ओके, आप यहीं रहिए.
2: ओके, थैंक यू.
0: आई कैंट फाइंड माई माउस, इट जस्ट रन्स अवे. हियर यू गो. ओके, देयर यू गो.
2: ओके.
0: या.

अच्छा, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9:15, और अभी जो है टाइम हो गया है शो के गिव अवे को अनाउंस करने का. एंड आप अपना फ़ोन जो है अपने पास रखें. 9722355555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. मैं आपको पहले देसी मंडी के गिव अवे के बारे में बता देती हूँ. दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू विन अ ग्रोसरी बास्केट फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन DFW एरिया. आई एम गोना आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड इफ यू आर द फर्स्ट वन गिविंग मी द राइट आंसर, देन यू गेट टू विन दिस हैम्पर विच इज़ फिल्ड विद एसेंशियल ग्रोसरीज फ्रॉम देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर्स हियर इन आवर एरिया. तो आप मुझे कॉल करें.

0: मेघा जैन इज द विनर फॉर टुडेज गिवअवे. आज जो देसी मंडी का गिवअवे है उसकी विनर मेघा जैन, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया. आई वॉज गेटिंग अदर कॉल्स इज वेल, द फोन लाइन्स वर ब्लिंकिंग, बट आई वॉज स्पीकिंग टू मेघा ऑन एयर एंड ऑफ कोर्स ऑफ एयर जब मैं उनकी डिटेल्स ले रही थी. तो आपके फ़ोन कॉल्स मिस हुए हैं. इफ़ यू स्टिल वॉन्ट अ कम ऑन एयर एंड लेट अस नो द राइट आंसर और टेल अस एनी थिंग अबाउट द फिल्म दैट यू वुड लाइक टू शेयर, प्लीज़ गिव मी अ कॉल बैक अगेन. मैं ये फिर से छोटी सी जो क्लिप है ये लगाती हूँ एंड देन वी आर गोना लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द सेम फिल्म वीर ज़ारा.
1: उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूँ, आज उसी इज्जत को अपने कदमों तले रौंद कर घर कैसे जा सकता.
0: इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी ये यश चोपड़ा साहब ने. इट्स सच अ हार्ट टचिंग, इमोशनल, वेरी लॉजिकल, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. और जो है इसके डॉट्स बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हुए थे पूरी मूवी के, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. गुरदास मान साहब की आवाज हमने इस सॉन्ग में सुनी, जो उन्होंने सॉन्ग गाया उदित नारायण के साथ. You're all, good morning, you're live on air. Would you want to talk on air or off air?
2: Either way.
0: Okay, so you are on air, sir. आप बताइए क्या हाल है आपका और क्या कहना चाहते हैं. I think you are a sir.
2: मेरा हाल बहुत ही बढ़िया है. मैं डेलस में आया हूँ अपने डिलीवरी करने. एक गाने की रिक्वेस्ट करनी है.
0: Okay, फिर मैं आपको ऑफ एयर लेती हूँ. Just hold on.

0: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
5: Chicken banana.
6: चिकन बनाना
7: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day, flavor play.
14: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
15: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
16: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
15: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
16: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
14: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
17: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

If you or anyone you know has been involved in a personal injury, such as any automobile accident or any personal injury, physical injury, you can contact attorney Omar Khwaja because he will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with the insurance companies can be stressful, and if you have an attorney that is experienced and will work in your favor and also will not ask you for a penny until you have been compensated. So you don't have to pay anything until you get your compensation back. You should definitely get in touch with Omar Khwaja. Call him at 469-300-5046. 469-300-5046 is the number to get in touch with Omar Khwaja, or you can visit his website, which is Omar, which is the website is attorneyomar.com. हमारे सफ़ी जी जो हैं, जिनको हम सब जानते हैं, जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले 39 इयर्स के हुए हैं और हमारे बहुत ही स्पेशल लिसनर हैं, कॉल्स भी करते हैं और अपना पूरा हमें बताते हैं कि वो इंगेज्ड हैं शोज़ के साथ, इन्वॉल्व्ड हैं हमारे फनीशा के साथ. सो उनका फ्राइडे को आई थिंक उनकी मामा उनकी मदर कह रही थी कि बर्थडे है, एंड ही जस्ट टर्न्ड 39 ऑन दिस फ्राइडे दैट जस्ट वेंट बाय 2 डेज अगो. तो उन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, देवानंद जी पर फिल्माया गया बहुत ही प्यारा सुंदर अच्छा सॉन्ग.

1981 में ना, एंड ऑफ 1981 एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अरमान, और वो शायद फिल्म हु नोज कितनी पॉपुलर हुई या क्या है, शायद हुई भी होगी, इट्स जस्ट मे बी आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट फिल्म. लेकिन वो जो उसका सॉन्ग है वो तो सबने ही सुना हुआ है, और इतना पॉपुलर सॉन्ग उषा उत्थप जी की आवाज़ में उन्होंने बहुत अच्छा गाया था. उषा उत्थप जो कि बहुत पॉपुलर हो गई थी, एंड शी हैड हर वेरी यूनिक वेलवेटी, वेरी हॉर्स, वेरी डीप टोन जो उनकी आवाज़ में, आई शुडन्ट से हॉर्स, बहुत ही वो तो मेलोडियस हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, और उनका जो है एक बहुत डीप टोन है उनकी आवाज़ में, और उन्होंने ये जो सॉन्ग गाया था बड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ था. एंड ऑफ कोर्स पॉपुलर हुआ होगा तभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी धुरंधर, उसमें वो यूज़ हुआ. एंड देवेंद्र एंड उनकी वाइफ जो है, लाइक आई सेड, दे आर गोइंग टू ऑस्टिन, एंड ऑन द वे दे आर लिसनिंग टू आर शो, टू दिस शो. एंड वो मुझे मल्टीपल जो है चॉइसेस दे चुके हैं, सॉन्ग्स मैंने पहले भी उनकी चॉइस के प्ले किए हैं. धुरंधर का एक सॉन्ग प्ले किया था, ये वाला सॉन्ग है, ये भी उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया है.

क्वीन में ये सॉन्ग यूज हुआ था. आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ गुड वर्जन ऑफ इट, लेकिन इसमें या तो फिर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड अननेसेसरी साउंड होती है या फिर बीच में डायलॉग्स आ जाते हैं. बट कोई बात नहीं, मूवी में तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा सेट बैठा था बैकग्राउंड में. उसको जब फ्लैशबैक्स आते हैं तो एंड देन ऑफ कोर्स इन द फोरग्राउंड शी इज़ एट अ क्लब, तो वहाँ पर ये सॉन्ग चल रहा है. सो एनी वे, धुरंधर फिल्म का हमने रंभा हो सुना, विच वॉज ऑल्सो रिप्राइज्ड वर्जन, और ये हंगामा हो गया. ये भी क्वीन मूवी में, इसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके अच्छा इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया था मूवी में. हमारी लिसनर है एक जो ये वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं. एक्चुअली नो, मेल लिसनर है, चाहती नहीं, चाहते हैं ये वाला सॉन्ग सुनना.

जब ये फिल्म क्वीन का मैं इससे पहले जो सॉन्ग है वो प्ले कर रही थी, हंगामा हो एंड ऑल दैट, राइट, तो उसमें मुझे क्वीन से याद आया कि क्वीन में एक बड़ा अच्छा वेल लव्ड सॉन्ग है, लंदन ठुमकता, और फिर मुझे लगा कि वो तो लाभ जंजुआ ने गाया हुआ है, जो कि काफ़ी पॉपुलर, सडन उनका जो है इंक्रीज़ हो गई थी फेम एंड स्टारडम, उन्होंने कुछ सॉन्ग्स जो हैं बहुत अच्छे गाए हैं, बहुत सारे जो हैं हिंदी फिल्मों में सॉन्ग्स गाए हैं। अनफॉर्चुनेटली वॉज जस्ट फाउंड डेड इन हिज हाउस, और चलो वो तो एक और बात है कि उनकी अनटाइमली जल्दी डेथ हो गई थी, एंड जो उन्होंने सॉन्ग्स, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उनकी देन है हिंदी फिल्मों के सॉन्ग्स के लिए, वो तो बहुत अच्छी रही है। ही बिकेम वेरी पॉपुलर विद दिस वन सॉन्ग। मैं अपने शो पे ऐसे सॉन्ग्स लगाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि लाभ जंजुआ की बात हो रही है तो ये वाला सॉन्ग है जिसके साथ उनको काफ़ी जो है उनको फेम मिला था। 1999 में आया था ये वाला सॉन्ग।

यहाँ जो बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं, जो अभी आई गेस एलिमेंट्री स्कूल के टॉप पर हैं या मिडिल स्कूल अभी एंटर कर रहे हैं, उनको ये वाला फॉर सम रीज़न ये सॉन्ग इतना पसंद आता है. व्हेन आई यूज़ टू वर्क विद किड्स, तो मुझे बहुत सारे बच्चे जो है ये वाला सॉन्ग सुना के पूछते थे, हैव यू हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग. तो मैं ज़्यादा कुछ उनके साथ बहुत एक्साइट नहीं होती थी, बिकॉज देन दे वुड वॉन्ट टू प्ले द होल सॉन्ग. बट या, दिस इज़ अ पॉपुलर सॉन्ग. इसकी स्पेशली जो इसकी बिगेनिंग है वो बहुत कैची है. और ये इन्होंने पंजाबी एमसी एंड लाब जंजुआ एंड उन्होंने ये जो है सॉन्ग बनाया. लाब जंजुआ ने, एज आई सेड, कि हिंदी फिल्मों के भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स गाए हुए हैं. अक्षय कुमार के लिए उन्होंने ये वाला सॉन्ग जो गाया था, मूवी भी बहुत अच्छी थी और सॉन्ग भी बहुत अच्छा.

आई डोंट नो हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाभ जंजुआ, लेकिन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंगर लगते थे, लगते हैं अभी भी जब हम इनके सॉन्ग सुनते हैं. इन्होंने जो है, इनकी पैदाइश पंजाब में हुई, लुधियाना के अराउंड, एंड ये जो है शब्द कीर्तन की तरफ इनका रुझान था, एंड देन धीरे धीरे फिर करके ये मेन स्ट्रीम सिंगिंग में आ गए. दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग इन हिज वॉइस, मुंडिया तो बच के रही, विच वॉज हिज फर्स्ट डेब्यू शॉट टू फेम 1999. I'm sure उन्होंने पहले भी गीत गाए होंगे, but this Punjabi MC song was the one that really got him to become so famous. And then ये जी करदा, and अब जो आज के शो का मैं जो आखिरी सॉन्ग लगाऊंगी, ऑफ कोर्स दैट इज़ द सॉन्ग दैट गॉट मी थिंकिंग अबाउट दिस सिंगर. इनकी डेथ अक्टूबर 2015 हुई थी, अपने घर इंडिया में ही, ये जो है बॉम्बे में. ही वॉज फाउंड डेड, देर वॉज नो फाउल प्ले, देर वॉज नो मर्डर, देर वॉज नो सुइसाइड. पोस्टमार्टम किया था, एंड देन इनको कुछ जो है अंडरलाइंग इशूज़, हेल्थ इशूज़ चल रहे थे, इज़ वॉट दे डिक्लेयर्ड टू एज द रीज़न एज द कॉज ऑफ हिज डेथ. सो दिस इज़ लाभ जंजुआ, एंड जो अब सॉन्ग होगा वो आज के शो का आखिरी सॉन्ग होगा. दिस इज आरजे एकरूप साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. अपना ध्यान रखिए, एंजॉय द वेदर, एंजॉय द सीजन, एंजॉय द मंथ ऑफ मे, एंड आई विल सी, और रादर द फर्स्ट वीक ऑफ मे. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555। यस, सुनेंगे कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने। अ बिग शाउट आउट टू एक रूप फॉर अ फैब फैब शो दैट शी ब्रिंग्स टू अस एवरी संडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड यस, सो लेट्स, आई जस्ट थॉट दैट यू नो, आज हर सेगमेंट में हम कोई एक एक्टर को पकड़ेंगे एंड उन्हीं ये कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे। हाउ अबाउट दैट? सो आई एम गोना स्टार्ट विद गोविंदा। सो वेल, लेट्स बिगिन विद दिस वन नंबर राइट नाउ।

Well, that was the title track, Hero Number One. And yes, आज Just Chill में मैं मधुलिका लेकर आई हूँ हर सेगमेंट में कोई एक पर्टिकुलर एक्टर के गाने. सो जैसे इस पहले सेगमेंट में हम सुन रहे हैं गोविंदा के गाने. सो वेल, गोविंदा जो है, ही वॉज नोन एज द किंग ऑफ एक्सप्रेशन. यू नो, हिज फेस डिड हाफ द डांसिंग. कई बार उनके जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं वो देखने में बड़े आसान लगते हैं, बट दे आर वेरी हार्ड टू कॉपी विद द सेम स्वैग. या जैसे ये जो हीरो नंबर वन है ना, इसका ये जो इट्स नोन फॉर इट्स कैची रिदम एंड

किंग ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो, हिज फेस डिड हाफ द डांसिंग. कई बार उनके जो सिग्नेचर स्टेप्स हैं वो देखने में बड़े आसान लगते हैं, बट दे आर वेरी हार्ड टू कॉपी विद द सेम स्वैग. या जैसे ये जो हीरो नंबर वन है ना, इसका ये जो इट्स नोन फॉर इट्स कैची रिदम एंड गोविंदाज प्लेफुल केमिस्ट्री, एंड ऑफकोर्स हिज पेयरिंग विद करिश्मा कपूर इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट एनर्जेटिक ड्यूज. सो या अभी अगले आधे घंटे, मतलब 10:30 तक हम सुनेंगे गोविंदा ही के कुछ मजेदार गाने. सो वेल, हियर इज द नेक्स्ट वन टेकन फ्रॉम पार्टनर.

पार्टनर एंड यस आई लव टू पार्टनर विद यू ऑल बिकॉज होता ये है कि कुछ हम एंटरटेनमेंट तो लेकर आते ही हैं लेकिन लेकर आते हैं कुछ आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन एज वेल राइट. सो जैसे कभी कभी होता है कि आप या आपका कोई जानकार इन्वॉल्व हो जाए कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, देन यू हैव टू रिमेम्बर अटर्नी ओमर ख्वाजा एज ना केवल ये इंश्योरेंस कंपनी से आपके लिए डील करेंगे, दे विल फाइट योर केस एंड साथ ही साथ आपको कुछ भी पे नहीं करना है अंटिल यू विन. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट अटर्नी ओमर.com, that's attorneyomar.com.

टेकन फ्रॉम बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दैट वॉज किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। बल मैं आपको बताती हूँ कि आप ग्रोसरी भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं अगर आप जाएंगे देसी मंडी। जी हाँ, द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन, देसी मंडी। उनके पास हैं आपके लिए बहुत से अमेजिंग ऑफर्स। साथ ही साथ अगर आप मंडे वेंसडे जाएंगे शाम 5 से 9 के बीच में, देन यू गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस। ट्यूसडे एंड थर्सडे, यू नो, 5 to 9 PM यू कैन बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसाज एंड चाट। बेसिकली एवरी वीकडे 5 PM to 9 PM यू कैन एन्जॉय दीज बाय वन गेट वन, नो मिक्स एंड मैच, टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई। सो बेसिकली यू गेट इन देसी मंडी मोर फ्लेवर, मोर सेविंग्स ऑल वीक लॉन्ग। एंड यस, इस सेगमेंट में हम सुन रहे हैं गोविंदा स्पेशल सम सॉन्ग्स। सो हियर इज द नेक्स्ट वन।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: सब कुछ साफ रख सकते हो,
6: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
7: क्योंकि ये कौन बोला?
6: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
8: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
9: Did you know Bawarchi Biryanis is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true. With over a decade of experience and 50+ locations across the country, Bawarchi Biryanis makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
10: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
11: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: गुडनेस इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड गुड बिगेट्स गुड। One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.
17: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

लिस्टिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां करते हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. पहले सेगमेंट में हमने सुने गोविंदा स्पेशल कुछ गाने, और इस सेगमेंट में हम सुनेंगे अनिल कपूर के कुछ खास गाने. एंड साथ ही साथ आपके लिए आ गया है एक गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन. तो अगर आप क्रेव कर रहे हैं कुछ चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, देन यू नो वेयर टू गो. यू नीड टू हेड टू फन पिज्जा किचन, वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. यू नो, सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, देयर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन. फॉर मोर डिटेल्स विजिट funpizzakitchen.com. और इस गिव अवे के लिए, वैसे तो अनिल कपूर के बहुत से हिट सॉन्ग हैं, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर एनी थ्री सॉन्ग्स जो कि मेरी फेवरेट जोड़ी है, विच इज अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित. तो आपको माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर के कोई भी तीन गाने मुझे कॉल करके बताने हैं. द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555.

taken from the movie Sahib. That was Anil Kapoor and Amrita Singh. And yes, इस segment में हम सुन रहे हैं अनिल कपूर के ही गाने. And I am surprised कि अभी तक सही जवाब नहीं मिला है मुझे. Fun Pizza Kitchen का ये giveaway, which is a $10 gift card, आप जीत सकते हैं अगर आप मुझे call करके कोई भी तीन ऐसे गाने बताएंगे जिसमें कि अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित दिखी हों. So the studio number once again is 972-235-5555. और अनिल कपूर की अगर बात करें ना तो ही इज ऑफन कॉल्ड मिस्टर एवरग्रीन बिकॉज फैंस जो हैं दे जोक दैट ही इज एजिंग बैकवर्ड्स. इनकी जो एनर्जी है इज अनमैच्ड, यू नो, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, फुल पावर, फुल एंटरटेनमेंट. सो येस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस आंसर विच इज टेल मी एनी थ्री अनिल कपूर सॉन्ग्स वेयर ही सीन अलॉन्ग विद माधुरी दीक्षित. वेल, जो अगला गाना है ना, वैसे तो इसकी पोएटिक लिरिक्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस गाने में अनिल कपूर का जो सॉफ्ट रोमांटिक साइड है वो भी बड़े बखूबी दिखा था. सो लेट्स एंजॉय दिस 1942 लव स्टोरी, द फेमस ट्रैक एक लड़की को देखा.

0: ऑलराइट, दैट वाज टेकन फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी. मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि इस सेगमेंट में हम सुन रहे हैं अनिल कपूर के सारे फेमस फेमस सॉन्ग्स, लेकिन मेरी फेवरेट जोड़ी है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की. तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी ऐसे तीन गाने जिसमें कि अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित दिखी हों. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Yeah, hi Madhulika.
0: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. एंड व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज अशोक.
0: ऑलराइट अशोक, तो बताइए कौन से तीन गाने बताने वाले हैं आप जिसमें कि दिखे अनिल कपूर अलोंग विद माधुरी दीक्षित.
1: तीन गाने, एक तो बेटा मूवी का धक धक करने
0: ये तो
1: लगा,
0: बिल्कुल ऑल टाइम फेमस एंड फेवरेट, राइट? या ओके.
1: फिर एक जिंदगी एक जुआ मूवी जो आई थी जिसका टाइटल सॉन्ग है ये जिंदगी है एक जुआ.
0: ओके या
1: And then, खेल मूवी वॉज देयर और उससे भी एक सॉन्ग था ना है जमी ना आसमां ना है वो तो हमने कहा.
0: ये तो काफी
1: और एक और
0: हाइपी
1: मूवी
0: गाना
1: आई थी
0: बताया
1: फोर्थ
0: आपने.
1: थी राजकुमार मूवी भी थी
0: हाँ
1: जिसमें भी
0: हाँ
1: एक अच्छा सॉन्ग था.
0: कौन सा वाला?
1: राजकुमार मूवी का मैंने उसी दिन सॉन्ग सुना था एक.
0: अच्छा ठीक है अशोक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया फन पिज्जा किचन का एक गिव अवे. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले द धक धक सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स. सो आप होल्ड करिएगा, आई विल टेक यू ऑफ एयर.
1: थैंक यू.
0: ऑलराइट, थैंक यू.

Well, that was taken from the movie Beta, of course. And yes, वैसे तो धक धक is known for Madhuri Dixit, लेकिन अनिल कपूर की presence, of course, added magic to the song, नहीं? अच्छा, अब जो अगला गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ ना, इट्स वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट आइकॉनिक इंट्रो सॉन्ग्स, एंड अनिल कपूर का जो स्वैग है ना इसमें, इट मेड इट लेजेंडरी. आई एम श्योर यू वुड हैव गेस्ड विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट, और नहीं गेस किया है तो भाई सुन ले, दिस इज द वन आई वॉज टॉकिंग अबाउट.

Well, yes, this segment is all about Anil Kapoor, and I really feel that Anil Kapoor के जो गाने हैं ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, you need to feel them, you know, feel कर सकते हैं आप उन गानों को, उनकी एनर्जी आज भी किसी भी पार्टी को झकास बना देती है. You know, अभी जैसे कुछ सालों पहले ही ये गाना आया था एंड इट्स स्टिल अ वेरी वेरी मच पार्टी सॉन्ग, एंड इसमें अनिल कपूर की एनर्जी इज मैचिंग विद फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह. आई एम श्योर यू गेस द सॉन्ग, एंड येस इट्स वन ऑफ अ वेरी वेरी फन फन नंबर, एंड सच में अनिल कपूर की एनर्जी अलग ही दिखती है इसमें.

0: नक तेरा पन दूंगा नक नब करना अच्छा नक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फसे आके और कोई फसे बिना।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी बजा है गन्ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: यार मैं थक चुकी हूँ। पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं। मेरे से नहीं होगा ये।
10: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वही पार्टी है। सिंपल।
9: मतलब?
10: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी।
1: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिसर्च में।
6: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
7: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
6: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
7: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
6: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
7: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
6: नंबर बोल जल्दी।
7: कॉल जेम्स एट 3218887345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
1: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
16: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।
17: डालस की धड़कन 104.9 FM, Fun Asia Radio.

listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. So पहले सेगमेंट में यानी कि 10 से साढ़े 10 हमने सुने गोविंदा के गाने, साढ़े 10 से 11 सुने अनिल कपूर के गाने, और अब हम सुनेंगे रणबीर कपूर के गाने. So well, यानी कि 11 से साढ़े 11 होंगे कुछ रणबीर कपूर के हिट सॉन्ग्स प्लेड. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक.

Well, that was Ghagra taken from Ye Jawani Hai Diwani. And well, आपके लिए आ गया है एक giveaway from Chandigarh Bites in Allen. जी हाँ, here's your chance to win for free कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन from Chandigarh Bites in Allen. साथ ही साथ आप जब वहाँ जाएंगे, you can enjoy special थाली जो Monday through Friday मिलती है with exciting new dishes जो rotate होती हैं daily. जी हाँ, and आपको बताऊँ that this restaurant is located off McDermott Drive in Allen. You can visit chandigarhbites.com for more details. अब क्योंकि हम रणबीर कपूर का ये सेगमेंट रखे हुए हैं और सुन रहे हैं वो गाने जिसमें रणबीर कपूर हो, तो आपको मुझे कॉल करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच गाने बताने हैं. एनी फाइव सॉन्ग्स जिसमें रणबीर कपूर के साथ दीपिका पाडुकोन दिखी हो. सो यू हैव टू गिव मी अ कॉल. द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555 एंड टेल मी फाइव सॉन्ग्स where you saw Ranbir Kapoor along with Deepika Padukone.

0: वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी संजू. एंड मैंने पूछा था आपसे सवाल कि क्योंकि हम इस सेगमेंट में सुन रहे हैं रणबीर कपूर के गाने, तो आपको मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको मुझे पूरे पांच गाने बताने हैं जिसमें कि रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण दिखी हों. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi.
0: हाउ आर यू?
1: I'm good. How are you?
0: आई एम डूइंग ग्रेट. एंड व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Purvi.
0: Alright, पूर्वी, तो बताइए कि कौन सा गाना बताने वाली हैं आप?
1: Yeah, sure. So, yes. So, first song is Khuda Jaane.
0: क्या बात है? Okay.
1: And second is Dilli Wali Girlfriend Chhod Chhaad Ke.
0: झूठा एक नंबर
1: का. So, मी जवानी है दीवानी.
0: Yeah.
1: then from movie Tamasha Matar Gashti.
0: Okay.
1: And and then the second song is Palbar Theh Jao.
0: Okay, yeah, from Tamasha, yes.
1: Yes, from Tamasha. And another song, another song would be from Ye Jawani Diwani Ballam Pichkari.
0: Okay, all right, Purvi, awesome. So, पहले तो बताइए, ये जो बलम पिचकारी, इसकी लिरिक्स कभी भी समझ में आए कि भैया बंदा कहना क्या चाह रहा था?
1: Sorry, right? Yeah, I miss your question. Sorry.
0: ये जो बलम पिचकारी गाना आया था और अभी भी इतना फेमस है, right? लेकिन आज तक उसकी लिरिक्स समझ में नहीं आई कि भाई मतलब क्या, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से, कि बलम पिचकारी तूने मुझे मारी, सीधी सादी, व्हाटएवर. बट हाँ, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, आपने जीत लिया है ये गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन. सो पूर्वी, आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर, एंड व्हाइल आई एम टेकिंग डिटेल्स फ्रॉम यू, आई एम गोना प्ले द खुदा जाने सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स. ओके,
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू,
1: थैंक यू, बाय.

taken from the movie Bachna Ae Haseeno, that was Khuda Jaane. And yes, इस segment में सुन रहे हैं हम रणबीर कपूर के गाने. So रणबीर कपूर के गाने जो है ना, सिर्फ music नहीं, एक feeling होती है, right? चाहे वो बदतमीज दिल हो, उस पर डांस हो, या चन्ना मेरिया पे emotions, हर mood का एक रणबीर track ज़रूर है, and it feels so very authentic.

0: Clara?
1: I leave it.
2: Reds.
1: Bayern.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: घर की याद नहीं आई तुझे जब से
3: आती है यार बहुत आती है इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं विजिट चंडीगढ़ वाले जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट
3: सच में बिल्कुल घर जैसा
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी बटर चिकन एंड मेनी मोर लोकेटेड इन अर्विंग देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट चंडीगढ़ वाले टेस्ट दैट फील्स लाइक होम
5: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
6: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft bunny cubes soaking up every bit of that spicy magic all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
7: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
8: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
7: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
9: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now, it's easier than ever. Gruh Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
10: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Funisia Radio.

सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम As the name suggests, Just Chill. Well, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. आज हर आधे घंटे पर हमने सुने कुछ पर्टिकुलर एक्टर्स के गाने. जैसे शुरुआत की थी हमने 10 से 10:30 गोविंदा के गाने सुने, 10:30 से 11 सुने हमने अनिल कपूर के गाने, 11 से 11:30 वी हर्ड रणबीर कपूर के गाने, और अब इस आखिरी आधे घंटे के सेगमेंट में सुनेंगे हम रणबीर सिंह के गाने. सो वेल, अगर आपको कुछ उनके पर्टिकुलर गानों को सुनने का मन है, देन स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555.

Yeah, that was taken from the movie Padmavat. And इस सेगमेंट में सुनेंगे हम रणवीर सिंह के गाने. एंड ऑफकोर्स रणवीर इज नोन फॉर हिज क्रेजी एनर्जी एंड फियरलेस स्टाइल, बी इट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, राइट? ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स इन टू हिज कैरेक्टर्स एंड दैट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रांगली इन हिज सॉन्ग्स. जैसे इनकी जो ये डांस स्टाइल है ना, इज़ वेरी वाइल्ड, एक्सप्रेसिव एंड टोटली अनइनहिबिटेड, नो होल्डिंग बैक. एंड ऑफकोर्स अगर इनके गानों की बात की जाए, राइट, सो अगर हम मल्हारी की बात करें, सो मल्हारी व्हेन यू प्ले इट, द वाइब ऑटोमेटिकली इज सो हाई दैट यू जस्ट हैव लॉट ऑफ एनर्जी का एक्सप्लोजन वो गाना सुनते ही. यस, सो यू हर्ड दैट राइट, वी आर गोना लिसन टू मल्हारी नेक्स्ट. एंड यस, रणवीर परफॉर्म्ड विद सो मच इंटेंसिटी इन दिस सॉन्ग दैट ही रिपोर्टेडली इंजर्ड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द शूट. है ना इंटरेस्टिंग?

Well, that was Baji Rao Mastani, and yes, इस सेगमेंट में हम सुन रहे हैं रणवीर सिंह के गाने. तो आपको बताऊं दैट ऑफ कोर्स यू नो ही इज नोन फॉर हिज क्रेजी एनर्जी एंड फियरलेस स्टाइल. एंड पहले तो उनके अब तो काफ़ी सुधार हो गया है, वरना उनके कपड़े पहनने की स्टाइल भी काफ़ी हटकर थी, राइट. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग, वेल दैट इज़ आँख मारे, इट्स अ सॉन्ग रिक्वेस्ट एंड इट वॉज अ रीमेक दैट टर्न इन टू अ पार्टी ब्लॉकबस्टर. आई फील इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज वाइब, यू नो, लाइक इस गाने की वाइब ही अलग है एंड द सॉन्ग इज स्टिल वेरी मच अ पार्टी नंबर.

और आई वॉज करंट लगा रे. एंड आपको पता है कि रणवीर सिंह जो है ही हिमसेल्फ कॉल्स यू नो कि वो खुद ही अपने आप को बोलते हैं कि आई एम लाइक अ लाइव वायर. एंड ऑनेस्टली दैट्स लाइक 100% एक्यूरेट. और मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट हिज लव फॉर दीपिका पादुकोण हिज वाइफ. एंड ही ऑफन पब्लिकली प्रेजेज हर एंड कॉल्स हर हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ. इनकी जो केमिस्ट्री है इज़ विजिबल नॉट जस्ट इन फिल्म बट इन रियल लाइफ टू. एंड यस, ये भी माना जाता है दैट रणवीर सिंह जो है ही ऑफन रैंडमली डांसेज इन पब्लिक. यू नो फैंस हैव कॉट हिम ग्रूविंग एनी वेयर एनी टाइम.

Well, that was taken from the movie Befikre, Nashe Si Chad Gayi. That was a song request coming from Mayank. Mayank, thank you so much for tuning in. Well, it's always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye, but aap kahin jayega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, as yahan humare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Neelam. मैं मिलूंगी आपको अगले शनिवार सुबह 10 बजे जब लेकर आऊंगी एक और नया सेगमेंट ऑफ जस्ट चिल जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
6: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
13: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
12: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
13: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
14: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
1: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
2: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
1: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
3: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, दी SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
5: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
6: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये।
7: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है। सिंपल।
6: मतलब?
7: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे। अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे। नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
4: Visit Fun Pizza Kitchen, FPK at Colony, is now open for dine-in.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.
11: एंड वेलकम बैक, दिस इज KZMP 104.9 FM फनेशिया रेडियो पर हूँ छूँ तुम्हारी साथी संगाथी नीलम दवे। रीमो मोर्गेज नो बिल्कुल आभार मानवा मांगी छू। 1998 थी तमारी सेवा में, लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स अने एमनी टीम बिल्कुल तमारा घर माटे तमारे जे पण स्ट्रेस फ्री चिंता रहित तमारे जो काम करवू है मोर्गेज सोल्यूशन्स माटे एक ज नाम एंड देट इज रीमो मोर्गेज। नंबर छे एमनो 972-245-5626। वंस अगेन देट इज 972-245-5626 अथवा तो यू केन विजिट dreamhomemortgage.com। हुसैन भाई ने आज कॉल करजो 972-245-5626। देसी मंडी अने देसी मंडी नी आपने ऑफकोर्स 7 दिवस याद आती है, परंतु ग्रोसरीज नी वीकेंड में वधारे याद आवे, कारण के वीकेंड में एम थाय के चलो जे काम नथी थयो वीकडेज में ए पतावी दईए। तो तमे कई काम पतावा निकळ्या हो, ग्रोसरीज नी लिस्ट लईने निकळ्या हो, तो देसी मंडी जरूर जजो, कारण के त्यां हमेशा तमने दरेक वस्तु पर खास ऑफर मळशे। बिगेस्ट, जी हाँ, डालस फूटपथ नो biggest South Asian grocery store, and that is Desi Mandi. શોપિંગની સાથે બિલકુલ ખાણીપીણીની ચીજો પણ છે તમારા માટે. મંડે એન્ડ વેન્સડે એટલે કે મંગળવાર સોમવારે અને બુધવારે બાય વન ગેટ વન ફ્રી ઓન બિરયાની, નૂડલ્સ એન્ડ ફ્રાઈડ રાઈસ. ટ્યુઝડે એન્ડ થર્સડે એટલે કે મંગળવાર અને ગુરુવારે યુ કેન ગેટ બાય વન ગેટ વન ફ્રી ઓન ડોસાઝ એન્ડ ચાર્ટ્સ. દરરોજ સાંજના 5 વાગ્યાથી રાતના 9 વાગ્યા સુધી. વન્સ અગેન, દેટ ઇઝ દેસી મંડી, લોકેટેડ ઇન લુઇસવિલ, ટેક્સાસ. હમણાં તમે રેડિયો ટ્યુન કર્યો છે, કંઈ વાંધો નહીં, થોડુંક ભૂલી ગયા 12 વાગ્યાને તમે, પણ ભૂલી ના ગયા હો તો ખૂબ ખૂબ આભાર. 12 વાગ્યા, અને ઘણા બધા મારા શ્રોતાઓ અમને કહેતા હોય છે કે એમના ફોનમાં એક અલાર્મ છે, અને જ્યારે હું આ સાંભળું ત્યારે મને, હું હંમેશા ઈશ્વરની આભારી છું. બીજું બધું તો નહીં, મને ત્યારે ખરેખર ઈશ્વર યાદ આવે કે આ ઈશ્વરની કૃપા છે કે આશીર્વાદ છે કે તમે ફોનમાં અલાર્મ મૂકીને કાર્યક્રમને સાંભળો છો. અને આ કાર્યક્રમ તમારો ગુજરાતી પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે, ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રત્યેનો, સંગીત પ્રત્યેનો પ્રેમ છે, એ દેખાડે છે. અને આજે મહિનાનો પહેલો રવિવાર, અને એટલા માટે ફક્ત અને ફક્ત કેટલાક સુંદર ગુજરાતી ગીતો. કોઈ સવાલ જવાબ નથી, પરંતુ તમારા જ સાથે કંઈક સુંદર વાતો, કંઈક સુંદર ગીતો ઓન 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी बजाएगा ना बिलू
3: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सब को थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
13: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
14: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।

दिस इज़ के जी एम 104.9 FM फनीशा रेडियो पे, मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड, जी हाँ 12 से 2 के बीच में ऑन संडेज आपकी और हमारी मुलाकात। सुना आपने 12 से 1 के बीच में मुझे गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए, और आपका और हमारा ये म्यूजिकल साथ रहेगा अब 2 बजे तक, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है आपके लिए कुछ ज़्यादातर गैर फिल्मी गाने लाने की। प्राइवेट एल्बम से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से लेके सूफी बैंड से लेके वेब सीरीज की बातें, ओटीटी प्लेटफॉर्म के गाने और ऐसे बहुत सारे गाने आप ही की सेवा में जो फिल्मी नहीं होते। और बहुत सारी जानकारी, कुछ बातें होती है कलाकारों की और इस एल्बम्स की, जी हाँ, क्योंकि यह है म्यूजिकल साथ आपका और हमारा, यह है म्यूजिकल मुलाकातें आपकी और हमारी एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM।

शशा तिरुपति की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। हम तो सीधे साधे थे, आंखों से मजाल हुई है। ऑन 104.9 एफएम वनेशा रेडियो, अमित त्रिवेदी का था संगीत। अच्छा, आपने कोई ऐसे आर्टिस्ट को सुना है या देखा है, या आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कहीं पे भी ये एक्सपीरियंस किया है कि एक सिंगर है जो जिसे संगीत से प्यार है, नॉट ऑफिशियली सिंगर येट, लेकिन संगीत से बहुत प्यार है, एट द सेम टाइम वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और इसीलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। मेडिकल कॉलेज इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना एक बहुत कठिन बात होती है। एडमिशन मिल गया, एडमिशन के बाद पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद लगता था कि नहीं, दिल कहीं और लगा हुआ है, ये मेडिकल डॉक्टरी वगैरह हमारा काम नहीं है। और मेडिकल की जो भी स्टडीज़ है, जो भी ब्राइटनेस है, जो ब्राइट फ्यूचर वगैरह वगैरह सब कुछ छोड़ के तय कर लिया कि मैं तो भाई सिंगर ही बनूंगी। तो जी, ये जो बात हुई है, ये बात हुई थी शशा तिरुपति के साथ। जी हाँ, वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट व्हेन शी स्टार्टेड इन स्कूल एंड इन कॉलेज, एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स की बहुत सारी जो एम्बिशंस होती है कि भाई हमारी लड़की पढ़ लिख कर बनेगी अच्छी सी डॉक्टर, बट एट द सेम टाइम ये डॉक्टर को तो बनना था सिंगर, एंड शी लेफ्ट ऑल हर मेडिकल स्टडीज़, जो भी उनकी पढ़ाई थी सब कुछ छोड़ के, जो भी उन्हें डॉक्टर की जो उनके ख्वाब थे छोड़ कर शी बिकेम अ सिंगर, जिन्होंने इतने सारे गाने नहीं गाए। एंड सी दैट फैक्ट इज कि ऑफकोर्स उन्होंने सारी बीएस पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, एंड शी वांटेड टू बिकम फुल टाइम सिंगर। तो शशा तिरुपति, जब हम ये नाम बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मेनी सॉन्ग्स रियली शी हैज़ इन हर ओन बकेट, कि जहाँ पर कह सकते हैं कि बॉलीवुड में उन्होंने इतने गाने गाए, लेकिन ये सारी अनसर्टेनिटी के बावजूद संगीत को पकड़ना और किसी और करियर को छोड़ना इज़ अ वेरी बिग स्टेप। कि हाँ, डॉक्टरी तो पक्की थी, बनने वाली थी, लेकिन बॉलीवुड में गाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो नहीं पता था, लोग उन्हें सिंगर एज अ सिंगर एक्सेप्ट करेंगे कि या नहीं करेंगे नहीं पता था, लेकिन संगीत जो है वो दिल से या सोल, अपने जो आत्मा है उनसे जुड़ा हुआ है, राइट। और जब आत्मा की आवाज़ उठती है कि भाई सब कुछ छोड़ दो, बस हमें पकड़ लो, तो वही है अच्छी कला, सच्ची कला।

कितनी खूबसूरत आवाज़ आपने जो सुनी वो थी अन्वेषा दत्त की। जी हाँ, अन्वेषा दत्त जो सिर्फ 13 साल की थी, वैन शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, तब उन्होंने, इफ़ यू रिमेम्बर, देर वॉज शो कॉल्ड जिसका नाम था छोटे उस्ताद। जी हाँ, छोटे उस्ताद था संगीत का, वंस अगेन संगीत की ही बात थी, और उसमें वो रनर अप रही थी, एंड दैट इज अन्वेषा दत्त, जिनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी। संगीत था पेपोन का 104.9 FM फनेशा रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ढेर सारे कॉल्स, और हमारी छोटी सी एक कोशिश है अच्छा संगीत लाने की, उस कोशिश को सराहने के लिए, हमारी पसंद को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि इस कार्यक्रम में हम ज़्यादातर आपके लिए गैर फिल्मी गाने लाते हैं और बातें होती है टीवी सीरीज़ की, वेब सीरीज़ की, OTT प्लेटफॉर्म की, तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे कॉलर्स होते हैं जो 90s की सीरीज से गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भाई। और हमारे एक कॉलर ने सुनना चाहा था उड़ान से, एंड यू नो आई वाज लिटिल हेजिटेंट, क्योंकि मैंने कहा कि पता नहीं, इट इज़ सच एन ओल्ड शो, 90s, अब अर्ली 90s की ये बात है, सो द क्वालिटी एंड द सॉन्ग, बट खैर आपने कहा है तो बिल्कुल आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूँगी। एंड इफ़ यू मे नॉट हैव हर्ड अबाउट उड़ान, तो उड़ान जो थी अर्ली 90s में, ये एक टीवी सीरीज, एक टीवी शो आया था, जो भारत की पहली महिला, द वेरी फर्स्ट लेडी DGP, और उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। जी हाँ, इफ यू रिमेम्बर, कंचन चौधरी वॉज द वेरी फर्स्ट DGP ऑफ इंडिया। उनकी रियल लाइफ पर आधारित थी वो कहानी, एंड यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट शो वॉज कि उसकी जो लेखिका थी, जो अभिनेत्री थी, लेखिका थी, एंड आई बिलीव उसकी डायरेक्टर नहीं थी, डायरेक्टर भी वही थी, कविता चौधरी नाम है उनका, वो असल में अपनी कम बहन की ही कहानी बता रही थी, यानी कि कंचन चौधरी की छोटी बहन थी कविता चौधरी, जिन्होंने ये सीरीज़ बनाई भी थी, इस सीरीज़ में उन्होंने काम भी किया था, और इस सीरीज़ की कहानी भी खुद उन्होंने ही लिखी थी, अबाउट उड़ान।

सो इट सीम्स कि बिल्कुल गाना नहीं था, इट वॉज जस्ट अ टाइटल म्यूजिक जिसे हम कहते हैं कि ओपनिंग ऑफ द शो. एंड आई एम श्योर कि ये संगीत सुनकर आपके बचपन की, जितने भी साल के आप हो गए बचपन के, ढेर सारी आपकी भी यादें ताज़ा हो गई होगी. ऑन 104.9 FM वनेजा रेडियो, मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ एवरी वीकेंड. और ये जो खास शो है एक से दो के बीच का, ये आपके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ जहाँ पर ज़्यादातर गाने हमारे होते हैं गैर फिल्मी. अगर आप भी कुछ भी टीवी शोज से सुनना चाहे, ड्रामाज हो या प्राइवेट एल्बम्स की बातें हो, किसी आर्टिस्ट को आप सुनना चाहे, देन वेल दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर शो ऑन 104.9 FM वनेजा रेडियो.

0: जुर्म सिर्फ इतना है उनको प्यार करते, क्या बात है भाई, इतना जुर्म मत कीजिए। आप ही की पसंद पर आपने सुना शहंशाह कव्वाली। जी हाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। कहा जाता है कि उनके नाम पे, उनकी क्रेडिट पे 100 से ज़्यादा, जी हाँ, कव्वाली एल्बम्स लिखे गए हैं, उन्होंने खुद गाए हैं। एंड नॉट ओनली कव्वाली, यू नो आई वुड नॉट जस्ट कन्फाइंड हिज टैलेंट टू कव्वाली, बिकॉज मैंने जब भी उनके कोई भी और भी गाने सुने हैं, चाहे फिल्मी गाने हो, बॉलीवुड में उन्होंने एक या दो फिल्मों के लिए, वट वॉज दैट मूवी ऐश्वर्या राय थी कि आओ प्यार करें, वॉज दैट दैट, यस, वो भी दोयल के साथ, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने बॉलीवुड के लिए संगीत दिया था। बॉलीवुड के लिए जब ये फिल्म बन रही थी आओ प्यार करें, तब उस प्रोड्यूसर ने उन्हें अप्रोच किया था कि आप उसके लिए म्यूजिक कंपोज कीजिए, विच वॉज वेरी हेजिटेंट कि भाई आप क्यों इतने सालों के बाद, बट ही स्टिल डिड दैट एनी वे। और एक लंबी सी कहानी है, और मैं देख रही हूँ घड़ी के सामने कि मेरा वक्त कमर्शियल ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन बस वो फिल्म उनकी पहली थी एज अ कंपोजर जहाँ पे उनकी आवाज़ में हमने गीत भी सुना था। एंड ऑन दैट नोट आई रिमेंबर एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि ही हैड दैट सॉन्ग, वो सॉन्ग के लिए ही वॉज लाइक कि मुझे ऐसी सिंगर चाहिए जो मेरी हर हरकत को पकड़ सके, एंड आई वुड नॉट एक्सेप्ट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग जो भी उनकी गायकी है। तब उन्होंने आशा जी को अप्रोच किया था एंड शी अग्रीड टू सिंग। आशा जी वॉज वेरी अफ्रेड कि अरे भाई मेरी गलती हो गई तो नुसरत साहब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे लिए, लेकिन शी डिड इट वेरी वेल, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन बॉलीवुड नुसरत फतेह अली खान साहब ने संगीत भी दिया था और उनकी आवाज़ में हमने एक गीत भी सुना था। मैं हूँ नीलम, रहूंगी आपके साथ 2 बजे।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
3: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologereeshwar.com.
3: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated Tandoori Chicken, mildly spiced, tender and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced Tandoori Chicken Pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Funasia.
6: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
7: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
0: एंड वेलकम बैक, दिस इज़ KCMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे। मैं हूँ नीलम आपके साथ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। इस धूप में, प्यारी सी धूप में, इतनी कड़ी धूप नहीं है अभी भी, प्यारी सी धूप, इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो या बारिश हो, आपके दिल के मौसम को हम रखेंगे बरकरार, म्यूजिकल हमेशा, ये है हमारा वादा एवरी वीकेंड। गृह प्रवेश, जी हाँ, ये है आपके लिए इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो एंड हो रही है ये बातें हायर रीजन से फ्रिस्को डैलस में। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे और दिल्ली NCR के बिल्डर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उस सारे एक्सपो के लिए, क्योंकि घर में एक घर होना बहुत ज़रूरी है ना, अपने वतन में एक घर होना कितने अच्छी ख्वाब है हमारे कि चलिए एक घर कहीं पर भी हो लेकिन हमारा घर एक वतन में भी होना चाहिए। तो ये है आपके लिए एक अच्छा सा मौका जहाँ पे ज़्यादा 200 मोर देन 200 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है आपके लिए। वंस अगेन दिस इज हैपनिंग हायर रीजेंसी फ्रिस्को में। यू कैन रजिस्टर एट gruhapravesh.com। वंस अगेन द वेबसाइट इज gruhapravesh.com एंड यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप। कभी कभी जिंदगी में पहला कदम, जी हाँ पहला कदम उठाना होता है। बड़े बड़े ख्वाब हमारे होते हैं, सोचते ही रह जाएंगे हम करना है लेकिन कब करना है, तो उसके लिए बस रजिस्टर करना है आपको। वंस अगेन दैट इज gruhapravesh.com और आपके ढेर सारे कॉल्स, आपकी ढेर सारी पसंद बिल्कुल यहाँ पे till 2 PM।

मेरा मेरा प्यार अमर जी, हाँ आप ही की पसंद पर ये आपने खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गीत सुना पाकिस्तानी ड्रामा से, और मैं हूँ नीलम आपके साथ। चलिए आपकी अगली पसंद सुनेंगे सुनो एल्बम से, और राज साहब ने ये गाना सुनने की कोशिश की है बिल्कुल, एंड ही वॉज रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग। तो चलिए आप सभी के साथ राज साहब आप भी सुन लीजिए, सुनो फ्रॉम द एल्बम, जिनका नाम है एल्बम का नाम सुनो, एंड द सिंगर इज लकी अली। आई एम श्योर आप सभी जानते हैं कि लकी अली जो है महमूद साहब के छोटे बेटे, उनके बहुत सारे संतान थे, उसमें से लकी अली। महमूद ने कभी भी संगीत में इतनी उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन जहाँ पर अगर हमारे दिल या हमारे आत्मा का रिश्ता होता है संगीत, तो हमारे घर में माहौल हो ना हो लेकिन संगीत हमसे जुड़ी जाता है। लकी अली इन द वॉइस ऑफ लकी अली, ये गीत जिसका नाम है सुनो 104.9 FM फनी एशिया रेडियो।

मैं हूँ नीलम रहती हूँ आपके साथ, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। जैसे कि मैंने कहा, आपके वीकेंड को ज़्यादा म्यूजिकल बनाने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, आई डीपली बिलीव इन दिस फैक्ट कि हम अक्सर बहुत सारी कितने भी स्ट्रेस जद्दोजहद में रहते हैं, कमाने के, सोशल लाइफ, बच्चों की बातें, लोन मोइंग तो अभी हो गई शुरू आप सभी की, क्योंकि समर है स्टार्टेड ऑलरेडी, एंड देन देर आर मैनी मैनी मोर, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन हमारी ज़िंदगी के। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होने चाहिए, कुछ पल ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक अलग दुनिया में हो संगीत की। एंड इट डजेंट हैव टू बी कि आप आपके घर के कोने में बैठे रहे, आप जहाँ पर भी है, आप गाड़ी में है, कहीं से जा रहे, कहीं आ रहे हैं, एंड यू मे बी विथ योर फ्रेंड्स, यू मे बी विथ योर किड्स, विथ योर फैमिली, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू डू हियर गुड म्यूज़िक और आपके पसंदीदा गाने हो, आप जो चाहते वो सुने, तो एक अलग ही दुनिया होती है आपकी, आपके दिल का माहौल कुछ अलग हो जाता है ना। तो बस यही एक होती है मेरी कोशिश एवरी वीकेंड ऑन 104.9 FM। एंड यू नो, आई हैव टू एडमिट वन थिंग कि कभी कभी मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। नॉट जस्ट दैट कि मैं ही आपको बताती रहती हूँ, मैं ही बोलती रहती हूँ, आपके भी कॉल्स आते हैं एंड यू डू गिव मी गुड इन्फॉर्मेशन समटाइम विच आई मे नॉट हैव हर्ड बिफोर और मे आई मे नॉट हैव रेड इट समवेयर बिफोर। तो ये बात मैं एडमिट करना चाहूँगी कि ये जो अगला गीत आपको मैं सुनवाने जा रही हूँ, उसके सिंगर के लिए मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन थैंक यू सो मच वासिफ साहब, उन्होंने ये गीत मुझे रिक्वेस्ट किया एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट नुसरत फतेह अली खान साहब, तब उन्होंने ये मेंशन किया कि नुसरत फतेह अली खान हम जानते हैं कि वो है चाचा राहत फतेह अली खान के, लेकिन ये जो शाहजमान अली खान का गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, ही इज़ अ सन ऑफ राहत फतेह अली खान। आई डिड नॉट नो दैट। आई मस्ट से व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग फर्स्ट टाइम, मैंने ये गीत दो तीन बार सुना है एंड आई लव दिस सिंगर्स वॉइस एंड आई वॉज ऑलवेज वंडरिंग। मैं अक्सर जितने भी गाने पाकिस्तानी ड्रामा से सुनती हूँ, आई मे नॉट रिमेंबर ऑल द नेम्स, मुझे काफ़ी ऐसी होती है बातें कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे नाम नहीं पता होता, बट आई डू रिमेंबर देयर गायक ही, उनकी वॉइस टेक्सचर एंड ऑल ऑफ दैट। तब मैं सोच रही थी कि इनकी टेक्सचर कितनी अच्छी है, यू नो ही सिंग सो वेल एंड फॉर एवरी सिंगर इट इज़ जस्ट नॉट हैव यू सिंग, इट इज़ जस्ट नॉट योर गायकी, इट इज़ जस्ट नॉट योर आपकी हरकतें। मैं भी संगीत सीखी हुई हूँ थोड़ा बहुत, नॉट फॉर एंटायर 7 ईयर्स, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक मैंने सीखा हुआ है, सो आई नो कि इट इज़ जस्ट नॉट हैव टू बी विथ योर गायकी, हरकतें, आपकी आवाज़ कैसी है, इट हैज़ टू बी लिटिल बिट विथ योर टेक्स्चर एंड हैव यू प्रोजेक्ट योर वॉइस व्हेन यू सिंग, हैव यू प्रोजेक्ट योर वॉइस। तो ये सारी चीज़ें इस सिंगर में है शाहजमान अली खान, और आज पहली बार मुझे पता चला कि ही सन ऑफ राहत फतेह अली खान साहब जी, बिल्कुल। तो चलिए उनकी आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गीत ऑन 104.9 FM।

विरासत जो होती है सिर्फ राजा और रजवाड़े की नहीं होती, विरासत संगीत की भी हो सकती है, और यही विरासत हमने सुनी यहाँ पर। जी हाँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भतीजे यानी कि राहत फ़तेह अली खान साहब और उनके बेटे शाहजमान अली खान साहब की आवाज़ में, उनकी आवाज़, उनकी गायकी जो है बहुत कुछ मिलती है उनके चाचा यानी कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब से। मैं हूँ नीलम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड।

0: बाजे रे बाजे मुरलिया बाजे, एक गीत जो भजन हो सकता है लेकिन उसे कैसे रॉक एंड पॉप फ्यूजन सॉन्ग में तब्दील किया जाए, ये एक अच्छा संगीतकार ही कर सकता है। और ये अच्छे संगीतकार की मैं जो बात करी हूँ वह है सलीम एंड सुलेमान। जी हाँ, ये गीत आपने सुना जिसमें बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, और ये इट वॉज़ अ लाइव कॉन्सर्ट। भूमि, भूमि इज़ अ नेम ऑफ अ कॉन्सर्ट जो अक्सर सलीम सुलेमान अपने पूरी बैंड के साथ करते हैं, विथ मैनी मैनी पीपल ऑन द स्टेज, मैनी सिंगर्स ऑन द स्टेज, अलॉन्ग विद दैट मैनी म्यूजिशियंस ऑन द स्टेज। और हर साल उनकी ये प्रस्तुति होती है। सलीम सुलेमान जो एक जाने माने कंपोज़र है, बट आई वुड नॉट जस्ट अगेन जस्ट से कि वो बॉलीवुड के कंपोज़र है, बियॉन्ड बॉलीवुड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड भूमि इज़ वन ऑफ सच एग्जाम्पल कि जो हर साल करते हैं ऐसी कॉन्सर्ट। इट्स अ लाइव कॉन्सर्ट जहाँ पर बस बाजे रे बाजे मुरलिया जैसे गीत भी हम बहुत ही चाव से, बट इन हिंदी फ्यूजन। मैं हूँ नीलम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं कह नहीं सकती कि आप सब कितने काइंड है, एंड इट इज़ जस्ट योर लव फॉर म्यूज़िक। तो बस इस संगीत के आपके प्यार को बरकरार रखिएगा, क्योंकि चीज़ें ज़िंदगी में आती रहेगी, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आता रहेगा, लेकिन अगर हमेशा एक चीज़ रहेगी आपके साथ आपके दिल में, दैट इज़ योर लव फॉर म्यूज़िक। सो उसे बरकरार रखिएगा 104.9 FM फनेशा रेडियो पे।
1: अड्डी सुनना नी तंग करदा तेरे मोडे टैटू तितली दा, दस ओनू तां नी तंग करदा तेरा देर रात तक निकली।

आप ही की पसंद पर ये पंजाबी गीत आपने सुना। और बिल्कुल, अगर आप पंजाबी गीत सातों दिन चौबीसों घंटे सुनना चाहे, अपना पंजाब दैट इज वन ऑफ द फनेशा नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ऑन HD4। सो बिल्कुल सुनिएगा फनेशा रेडियो पे। मैं रहती हूँ आपके साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड। अब मुलाकात होगी अगले शनिवार। एक्चुअली नॉट ऑन सैटरडे, आई जस्ट रिमेम्बर आई एम आउट ऑफ टाउन ऑन सैटरडे, लेकिन बिल्कुल मुलाकात होगी संडे।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
4: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
4: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
8: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया
6: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
4: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
9: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel. Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
10: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity, hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
11: Hello and good afternoon, my Fun Asia family. आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे देसी गर्ल या फिर कह लें आरजे सिम्मी को और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ दोपहर के 2 से 5 बजे तक तो अगले 3 घंटे हम एक दूसरे से रूबरू होने वाले हैं ढेर सारी बातें करने वाले हैं और आज का शो का थीम है संडे स्पेशल हम ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे बहुत सारी फन एक्टिविटीज होंगी लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं
12: तो

हाँ जी, और ऐसे ही गहरा होता है हमारा और आपका रिश्ता। अभी अभी एक मुझे कॉल आई है और सुरैया जी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि मैं शफ़ी को ज़रूर मेंशन करूं, और शफ़ी मैं आपके लिए बहुत ही जल्द गाने बजाने वाली हूं। और हम बात कर रहे हैं संडे स्पेशल की। तो यूजुअली क्या होता है कि हम हर वीकडे पे जो भी हमारा काम रह जाता है किसी दिन, मतलब ट्यूसडे को हमने कुछ सोचा हो कि चलो ग्रॉसरी डालनी है पर नहीं ले आ पाते, या फिर कुछ होता है कि कार वॉश कराना है या फिर कहीं जाना है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा चलो वीकेंड कर लेंगे, यू नो सैटरडे संडे कर लेंगे, संडे कर लेंगे, पर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि संडे तो भाई हमारी बॉडी हमें कहती है कि आज यार आराम कर ले, आज रहने देते हैं, एक ही दिन तो मिलता है। और पता चलता है कि कभी किसी के बच्चे को कहीं लेके जाना है, किसी का सॉकर गेम हो गया, कुछ छूट रहा हो, और हम हमारा कहीं कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि अरे पूरा दिन तो ड्राइविंग में ही चला गया। बट क्या करें, ऐसी ही है ज़िंदगी, तो जीना है। तो आप हमें फ़ोन करके बेशक बताएं कि आपका संडे क्या प्रोडक्टिव था, या आपने रेस्ट लिया, मस्त मज़े किए। वैसे पूछे ना तो मुझे इसमें कोई खराबी नहीं नजर आती कि मैं एक संडे अपने आप को डेडिकेट कर दो, यू नो मैं बस रेस्ट करूं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करूं, रेडियो सुनती रहूं, क्योंकि मे वे दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो मुझे कॉल कीजिए एट 972-235-5555 पे, बिकॉज आई एम ऑल ईयर्स। आई वॉन्ट टू लिसन व्हाट संडे मीन्स टू यू एंड हाउ प्रोडक्टिव वॉज इट।

भाई एक नंबर तो फन एशिया रेडियो है. आई मीन हम कितना एंजॉय करते हैं अगर हम कहीं गाड़ी में हो या घर पे हो, और थोड़ी बहुत अगर स्ट्रेस लाइफ में चल भी रहा हो और अगर कोई अच्छा सा गाना सुना दे तो कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है. तो अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, अगर आप मुझे कोई गाना बताना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बेशक मुझे कॉल कीजिए और बताइए. और हम इस संडे को और स्पेशल बनाने के लिए कुछ गेम्स लेके आए हैं जो हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड.

अब नौकरी तो भाई ऐसी ही है, करने का दिल नहीं है फिर भी किए जाओ, बट संडे ऐसा नहीं है, संडे स्पेशल है, संडे को हम जो जी चाहता है वो कर सकते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं होता, हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता और बिल्कुल हम अपनी मरमर्जियां कर सकते हैं। तो इसी संडे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मेरा नाम है सिमी और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे देसी गर्ल। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो संडे है वो हम सोचते हैं कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो कहती है कि अरे यार चिल मार, आराम कर, मूवी देख, बाहर खा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका संडे कैसा रहा, लाइक आपने जो प्लान किया था क्या वो कर पाए, या फिर आप भी मेरी तरह हैं कि चलो अब अगले वीक देख लेंगे, अगले वीक तो ऐसे भी टफ होने वाला है तो उसी बीच हम और टाइम निकाल लेंगे इन जरूरत भरी चीजों के लिए, है ना। तो आप मुझे बिल्कुल कॉल करें 972-235-5555 पे।

हाँ जी, आई विश कि हमारा संडे भी यूं ही बस चलते रहता, हमें कितना मजा आता। अब जो है मैं प्ले करने वाली हूँ 12 महीने में 12 तरीकों से प्यार करने के तरीके। यस, द सॉन्ग इज नन अदर देन ढिंक छिका। और ये है ना, ये बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट आई है हमें सोहेल जी की तरफ से, उनकी वाइफ मरियम के लिए। मरियम जी, मैं जानती हूँ कि आप थोड़ी नाराज चल रही हैं, आपका मूड थोड़ा ऑफ चल रहा है, बट मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपने ये सॉन्ग सुना ना, तो वापस से आपको अपने पति से दोबारा प्यार हो जाएगा।

0: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
1: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
0: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
2: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
3: आती है यार, बहुत आती है। इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
1: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
3: सच में बिल्कुल घर जैसा।
1: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: O haseena zulfon wale jaane jahan,
7: zulfen sirf hawa mein nahi style mein bhi udni chahiye. Bollywood style layers ho, soft curls ho ya complete hair makeover, Ambreen Salon gives you that perfect hairstyle jo aapki personality ko kare highlight. Because great hair doesn't just change your look, it changes your confidence. Mention FunAsia and get 10% off on your hairstyle service. Call Ambreen at 214-909-6601
8: or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
7: Ambreen Salon, style that moves with you.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili and soft bunny cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
13: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಫ್ರಿಸ್ಕೋ, ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
14: हेलो एंड वेलकम बैक. दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम अपने शो को आगे बढ़ा रहे हैं. मेरा नाम है सिमी और मैं हूँ आपकी आरजे देसी गर्ल. और आज का जो हमारा सेगमेंट है उसे हमने कहा है संडे स्पेशल. और हम ले रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट. और यू नो, आज का जो हमारा ये रिक्वेस्ट वाले सेशन चल रहे हैं ये काफ़ी रोमांटिक हो गया है. लाइक अभी थोड़ी देर पहले हमें एक रिक्वेस्ट आई थी एक रोमांटिक सॉन्ग की और अब एक और रिक्वेस्ट आई है हसन जी की तरफ से उनकी वाइफ हुमू के लिए. और उन्होंने रिक्वेस्ट की है जो सॉन्ग है सलमान खान और अनु मलिक का कि एक गरम चाय की प्याली हो. आई मीन इतना ही चाहिए एक इंसान को ज़िंदगी में कि एक प्याली हो और साथ कोई पीने वाला हो. आई मीन इससे ज़्यादा इंसान बंदा क्या ही चाहता है लाइफ में, अपने हम सफर का साथ हो.

हाँ जी, ये थी गरम चाय की प्याली। और अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने अपना लंच कर लिया होगा, तो अभी थोड़ी देर में हम बिल्कुल जा सकते हैं चाय पे। बट उसके पहले, अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ आप बात कर सके, चाय पी सके, तो कोई बात नहीं जनाब, आप झल्ला भी रह के बहुत लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लाइफ जीने के बहुत सारे तरीके हैं, और उनमें से झल्ला बनना भी एक तरीका है।

सच है कि कोई ना कोई आपका दिल जरूर ले जाता है, आंखों आंखों में या फिर बातों बातों में। और मेरा दिल जो है वो अभी अभी अपनी प्यारी प्यारी बातों से मरियम जी ने ले लिया है। उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, किसके लिए? मेरे लिए। इट इज़ सो स्पेशल फॉर मी। आई मीन, आप लोग कॉल करके मुझे अगर मेरे ही लिए गाना डेडिकेट करते हैं, मिल लेगा आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने काफ़ी थॉटफुल सॉन्ग सेलेक्ट किया है। उन्होंने बोला है मुझे मेरे ख्वाबों में बजाने के लिए फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्योंकि मेरा नाम जो है जनाब बिल्कुल उसी मूवी से लिया गया है। मैं पैदा हुई थी और ये मूवी रिलीज हुई थी और मेरे मम्मी पापा को ये नाम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया सिमरन सिमी। सो हियर इज़ योर आरजे देसी गर्ल डेडिकेटिंग अ सॉन्ग फॉर हरसेल्फ From Mariam. Thank you so much, Mariam ji.

आई मीन आप चांद लेके नहीं आ सकते हैं माना, लेकिन आप अपने लव्ड वंस के लिए गाना तो डेडिकेट कर ही सकते हैं। तो अगर आपके कोई फरमाइश है, आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग है जो आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको यहाँ से बजाऊं, तो बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए एट 972-235-55 पे। अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट तो है ही। आई होप यू लाइक माई प्लेलिस्ट। दिस इज आबाद बर्बाद।

0: हाँ, हर कोई यही चाहता है कि या तो बर्बाद कर दो या तो आबाद कर दो, बीच में मत रखो यार। आई मीन क्लैरिटी दे दो लाइफ में। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, द सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी लूडो एंड इट्स एन अमेजिंग मूवी। आई जेन्युइनली लव द मूवी। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, मतलब जो डायरेक्शन है कि कैसे चार स्टोरीज, जैसे लूडो के चार ब्लॉक्स होते हैं ना, खाने होते हैं, तो उसी में हर एक स्टोरी का अपना इमोशन है, अपना इम्पोर्टेंस है, और सारे अच्छे कलाकार कैरेक्टर्स हैं, सबने बखूबी निभाया है अपना रोल। तो दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज़ वेरी वेरी स्पेशल एंड दिस मूवी इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल एंड यू शुड वॉच इट इफ़ यू हैवेंट। और जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है, ये रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम निले, एंड निले इज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, एंड द सॉन्ग इज ओ जाने जाना। ब्यूटिफुल अमेजिंग सॉन्ग। आई एम सो ग्लैड, यू नो, कि नया जनरेशन भी दिस आइकॉनिक सॉन्ग सलमान एंड ऑल, दे स्टिल फील द वाइब। इजंट इट अमेजिंग? दिस वन इज फॉर यू निले।
1: ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: लैपटॉप चार्जर कॉफी फोन उफ ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता
5: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग
4: ओ गॉड पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है
5: आहा आई कीप दैट पाथ सिंपल
4: कैसे
5: ज्वेलरीज जो ऑफिस डिनर वीकेंड हर दिन हर ओकेजन को सूट करे
4: ओ दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी
5: या कैरेट लेन काइंड
0: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
6: Breaking news! Home loan ya refinance, ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com. Or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: It's true. Hum apne sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
10: क्योंकि ये कौन बोला
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पोलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 972-877-2500
12: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
0: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
15: हाय डैलस दिस इज रणबीर कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
16: हेलो एंड वेलकम बैक मैं हूं आपकी अपनी आरजे देसी गर्ल और मुझे सिम्मी भी बुलाते हैं अभी स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 3:04 और अब हम एक नया सेगमेंट जो कि बहुत ही फन एंड इंटरटेनिंग सेगमेंट है वो शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियो अंताक्षरी आई नो अंताक्षरी इज अ गेम जो हम सब एक रूम में बैठ के खेलते हैं और गाना गाते हैं और जनरली जिस सॉन्ग पे एंड हुआ है उसका एक पर्टिकुलर लेटर या कभी कभी उसका वर्ड लेके हमको दूसरी टीम को जो है वो नेक्स्ट सॉन्ग गाना होता है हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसा सेम सेटअप रेडियो के थ्रू कर सके लाइक हमारे और आपके बीच तो बट इसके थोड़े से रूल्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ. बाय द वे, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसका कोई गिव अवे नहीं है. अगर आपने कोई सही आंसर दिया तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए. ये बस एक तरीका है आपसे रूबरू होने के लिए, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये गेम खेल के बहुत मज़ा आएगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम इसको कैसे खेलने वाले हैं. बेसिकली हम टारगेट करेंगे कि हमें जो सॉन्ग सुनाया जा रहा है उसका एक वर्ड पकड़े हम, और उससे जो है नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट करें. सपोज कि एक सॉन्ग है गल्लन गुड़िया, तो उसमें जो सेंटेंस है उसमें आता है बीच में कि मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे. तो अब इसमें आपने दो वर्ड पकड़ा जो कि बहुत कॉमन है, लाइक चांद और तारे. तो चांद के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे चांद सिफारिश, या फिर चांद छुपा बादल में, या फिर तारे अगर ले लें तो तारे जमी पर, या तारे हैं बाराती. सो हम जो है जो भी सॉन्ग बज रहा है अभी रेडियो पे उसका एक भी कोई भी वर्ड उठाइए, और उससे हमें नेक्स्ट सॉन्ग का, अगर वो स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड से, तो उसका कोई सॉन्ग बताइए, और हम आपको डिक्लेयर करेंगे विनर. हम आपका नाम लेंगे ऑन एयर. तब तक आप ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए.

हाँ जी, तो प्रदीप जी ने अभी अभी कॉल करके मुझे बताया है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर सॉन्ग से दो वर्ड्स उठाए हैं एक्चुअली. पहला है डिस्को और दूसरा है हसीना, और उन्होंने मुझे दोनों ही वर्ड से नए नए सॉन्ग्स सजेस्ट किए हैं. आई थिंक आपने गेम का रूल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ लिया. मैं बाकी लिसनर्स के लिए एक बार और दोहरा देना चाहती हूँ कि हम खेल रहे हैं यहाँ पे रेडियो अंताक्षरी. तो आपको क्या करना है कि जो भी सॉन्ग अभी रेडियो पे बज रहा है उससे कोई एक वर्ड उठाना है. जैसे कि अभी बज रहा था दर्दे डिस्को, तो प्रदीप जी ने मुझे बताया कि डिस्को से हम नेक्स्ट सॉन्ग जो है उनकी तरफ से जो नेक्स्ट सॉन्ग सजेस्ट किया है उन्होंने, वो है डिस्को दीवाने फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर. सो इसी तरीके से अब जब मैं डिस्को दीवाने बजाऊंगी, तो अगर आपको उसमें से कोई ऐसा फेमस या ट्रेंड वर्ड लग रहा है जिससे कि बहुत सारे और भी सॉन्ग्स हैं, तो आप सजेस्ट करें. एंड आई वुड लाइक टू प्ले दिस गेम विथ यू गाइज, दिस इज फन. आई होप यू लाइक इट टू.

हाँ जी, हम खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी, और इस गेम का रूल ये है कि आपको जो भी रेडियो पे गाना बज रहा है उसे एक वर्ड उठाना है और उससे दूसरा गाना सजेस्ट करना है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये गाना इजी होगा, आई मीन डिस्को दीवाने। दीवाने इट्सेल्फ इज अ आई मीन वेरी फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड, अगर आप मुझे बता सकते थे इसके लिए। खैर, अभी मुझे इस सॉन्ग के लिए कोई कॉल नहीं आया है, तो मैंने दीवाना वर्ड जो है कॉमन वर्ड वो यूज़ नहीं किया है। मैंने खुद से सोचा है कि मैं टर्म उठाऊंगी रात, जो कि इसके सॉन्ग के लिरिक्स में आ रहा था, और उससे मैं आपको नेक्स्ट सॉन्ग जो कि है हीरोपंती का रात भर वो प्ले करने जा रही हूँ। तो आप इस सॉन्ग को ध्यान से सुनिए, और इससे मिलता जुलता अगर आपको कोई सॉन्ग इसके किसी भी वर्ड से मिलता जुलता अगर आपको कोई सॉन्ग ध्यान में आ रहा है तो मुझे कॉल करके बताइए। हमारा नंबर है 972-235-5555।

हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो. यू आर लिसनिंग टू रेडियो फनेशिया नेटवर्क. एंड हम अभी आप जो शो सुन रहे हैं उसका नाम है संडे स्पेशल. मैं आपके साथ हूँ दोपहर के 2 से शाम 5 बजे तक. और अभी जो हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट है वो उसमें हम एक गेम खेल रहे हैं जिसका कि नाम है रेडियो अंताक्षरी, जहाँ पे मैं एक सॉन्ग बजा रही हूँ, आपको उससे एक वर्ड उठाना है और उससे नेक्स्ट सॉन्ग सजेस्ट करना है जो कि हम प्ले करेंगे और आपका नाम भी लेंगे अगर आपने सही जवाब दिया तो. वैसे एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस, कि इसके ऊपर कोई गिव अवे नहीं है. आई एम सॉरी, हम गिव अवेज नहीं करते वीकेंड्स पे जनरली, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम यू. एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉल मी, यू कैन कॉल मी एट 972-235-5555 पर. तो मैंने जो लास्ट सॉन्ग था रात भर उसे एक वर्ड उठाया है सा.

ये तो बात सच है कि अगर कोई साथ होता है तो फिर क्या ही बात होती है। मतलब लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, बट अगर उसको साझा करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए अगर आपके पास एक कंपेनियन है, देन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आई जस्ट रिसीव कॉल फ्रॉम टू ऑफ आवर लिसनर्स। अनिल जी ने अभी कॉल किया था और उन्होंने बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग दिस मूवी विच इज़ तमाशा, और यू नो दीपिका पादुकोण और रणबीर की एक्टिंग के बारे में। काफ़ी अच्छी मूवी है, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुई थी, पॉपुलर नहीं हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक कि इट वॉज अहेड ऑफ टाइम, बट अगर आप इसको दोबारा री रिलीज करो, स्पेशली हम जो इस जनरेशन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया या कुछ भी हो गए, तो और यू नो थोड़ी जद्दोजहद तो है अपना पैशन फॉलो करने में, फाइनेंशियल क्रंचेस भी होते हैं तो अन फैमिली प्रेशर भी होता है, तो द मूवी इज़ अबाउट दैट। और अगर आपने नहीं देखी है तो बेशक जाएं और सुने। और इसके साथ ही हमें अभी कॉल किया था प्रदीप जी ने, आई थिंक ही इज़ एन्जॉइंग द शो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग प्रदीप जी। और उन्होंने अगर तुम साथ हो से एक वर्ड लिया जो कि है तुम, और उन्होंने सजेस्ट किया है तुम बिन जाऊं कहां, तो मैं उसका HD वर्जन ढूंढती हूँ और प्ले करती हूँ। तब तक आप ये रोमांटिक सा गाना एन्जॉय कीजिए।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: बावर्ची बिरयानीज इन प्लेनो, बिगर, बेटर एंड द बेस्ट नाउ सर्विंग एवरीडे लंच स्पेशल्स, थालीज, बिरयानी कॉम्बोज एंड रिफ्रेशिंग ईरानी चाय विद डिलीशियस इंडियन स्नैक्स, फ्रेशली मेड स्वीट्स एंड बेकरी आइटम्स। प्लीज वॉक इन टू बावर्ची प्लेनो और विजिट bawarchiplano.com।
8: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
9: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
8: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
10: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
11: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
12: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruh Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
13: Hello and welcome back to my show. You are listening to Sunday Special with RJ Desi Girl. मेरा नाम है सिमी और अभी स्टूडियो में टाइम हो गया है 3:33 p.m. But tension not, क्योंकि अभी हमारा साथ और भी लंबा है। मैं हूँ यहाँ पे 5 बजे तक और हम खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी, जहाँ पे आपको जो सॉन्ग सुनाई दे रहा है रेडियो पे उससे एक वर्ड उठाना है और उससे नेक्स्ट सॉन्ग सजेस्ट करना है। तो अभी हमारे पास एक कॉल आई है जो कि अमित जी ने की है और हम प्ले कर रहे थे सॉन्ग अगर तुम साथ हो और उन्होंने वर्ड उठाया है अगर, विच इज जनरली अ डिफिकल्ट वर्ड, नॉट अ वेरी frequently used word in songs, और अगर शब्द से उन्होंने suggest किया है अगर मैं कहूँ, और उससे मुझे एक और बात याद आ गई कि there is another song too, मैं अगर कहूँ, but हम play करेंगे अमित जी का suggest किया हुआ गाना from the movie लक्ष्य, अगर मैं कहूँ।
14: अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी?
13: तो आप ध्यान से सुनिए और इसके एक वर्ड से मुझे नेक्स्ट सॉन्ग सजेस्ट।

हेलो एंड वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. मुझे अभी बहुत सारे कॉल्स आए, ऑलमोस्ट 10 to 12 कॉल्स आए, एंड सॉरी मैं जिसका भी कॉल उठा नहीं पाई. तो सबसे पहले जो हमारे लिसनर हैं, और मैं मेंशन कर दूं कि हम एक सॉन्ग प्ले कर रहे थे और उससे हमने कुछ वर्ड्स उठाने को बोले थे जिससे हम नेक्स्ट सॉन्ग बजा सके. तो जो हमारा सॉन्ग था उससे अर्चना जी ने उठाया है दिस वर्ड कहो, और उन्होंने कहा है प्ले करने के लिए कुछ ना कहो. और हमें फिर जगत शाह जी से भी कॉल आया जिन्होंने उठाया था वर्ड क्या, और उन्होंने बोला कि क्या हुआ तेरा वादा. उसी तरीके से अच्छा जो है, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि अच्छा वर्ड से सॉन्ग बजाने के लिए, जो कि है बड़े अच्छे लगते हैं फिर अच्छा तो हम चलते हैं फ्रॉम रुचिका. और भी हमारे सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किए और हम उनको प्ले करने वाले हैं बारी बारी. सो एंजॉय द शो. और अगर आपको इस सॉन्ग से भी कुछ वर्ड मिल रहे हैं जिससे आपको कुछ दूसरा गाना याद आता है तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए और बताइए. हमारा नंबर है 9722355555.

हेलो एंड वेलकम बैक. थैंक यू अगेन फॉर योर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स. और हमें बहुत सारे कॉल्स आए फॉर दिस सॉन्ग, क्या हुआ तेरा वादा से भी. बहुत लोगों ने वादा वर्ड लेके सॉन्ग सजेस्ट किया है. तो आई एम गोइंग टू प्ले द फर्स्ट रिक्वेस्ट विच केम फ्रॉम दिस सॉन्ग फ्रॉम जैस, विच वॉज वादा कर ले साजना. देन आई हैव राज, जिन्होंने शब्द चुना था होश, और एकास्त्र की हम होश में शाहरुख खान की इनिशियल जो मूवी थी उससे सजेस्ट किया है. फिर मोनिशा ने भी वादा वर्ड लिया है, और वादा रहा सनम जो है सॉन्ग सजेस्ट किया है. आई एम ट्राइंग टू प्ले देम वन बाय वन, स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक दोस्तों, हम खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी, जहां की जो भी सॉन्ग आपको एफएम पे सुनाई दे रहा है उससे एक वर्ड उठाना है, मुझे कॉल करना है एट 972-235-5555 पे और उस वर्ड को लेके एक नया सॉन्ग सजेस्ट करना है। तो हम ये गेम पिछले एक घंटे से खेल रहे हैं और मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, स्पेशली जैसे ही मैंने अगर तुम साथ हो बजाया, क्योंकि उसमें इतने ट्रेंडिंग और फेमस एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, तो मुझे काफ़ी सारे सॉन्ग्स के रिक्वेस्ट आए, जो कि मैंने मैक्सिमम ट्राई किया कि मैं सारे लोगों के रिक्वेस्ट ले पाऊँ। आई एम सॉरी जिन लोगों के रिक्वेस्ट मैं नहीं ले पाई। आप डेफिनेटली ये गेम खेलते रहिए और आई एम ट्राइंग टू प्ले सम न्यू सॉन्ग्स जिससे कुछ नए नए शब्द उभर कर आए, एंड आई होप यू गाइज विल कॉल मी। आई एम गोइंग टू प्ले अ वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम गुलजार साहब एंड शान।

गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस सॉन्ग से एक शब्द चुनना है और उससे मुझे नया सॉन्ग सजेस्ट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल गाइस एट 972-235-5555 पे।

हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो विच इज संडे स्पेशल एंड वी आर प्लेइंग रेडियो अंताक्षरी। जी हाँ, मैं हूँ आरजे देसी गर्ल, आपकी अपने सिमी, और हम खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी, जहाँ पे आपको जो सॉन्ग प्ले हो रहा है उसे एक शब्द उठाना है और उससे नेक्स्ट सॉन्ग बताना है। तो हम प्ले कर रहे थे थोड़ी देर पहले ओ हम दम सुनिए रे, और वहाँ से समीर जी ने हमें कॉल किया और बताया कि हम वो वर्ड सोनी ले सकते हैं और उससे एक बहुत ही फेमस पार्टनर का जो सॉन्ग है सोनी दिन नखरे, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग भी रहता है और स्पेशली शादियों में काफ़ी बजते हैं, वो सॉन्ग प्ले करने के लिए। तो आई एम टेकिंग अप योर रिक्वेस्ट, इन्जॉय सलमान एंड गोविंदा हियर।

एकदम, मतलब मन कर जाता है कि बस अभी डांस ही कर ले. तो थैंक यू सो मच समीर जी ये सजेस्ट करने के लिए. इट वॉज लॉट ऑफ फन प्लेइंग द गेम विद यू गाइज. नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो अभिषेक जी ने बताया है. उन्होंने वर्ड लिया है शाम फ्रॉम दिस सॉन्ग जो अभी हम बजा रहे थे, और उन्होंने कहा है प्ले करने के लिए अनदर सलमान खान सॉन्ग. आज तो सलमान खान का दिन है भाई, आजा शाम होने आई.

और इसके बाद हमें एक और सॉन्ग सजेस्ट किया था रघु जी ने, जिन्होंने वर्ड लिया था हमदम सोनियों से, सॉरी सोनी दे नखरे सॉन्ग से, और उन्होंने सजेस्ट किया था मेरे हाथ में, आई थिंक ही चोज द वर्ड मेरे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग जो भी हम प्ले करेंगे।

0: तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।
1: कितने पास है,
2: तो आपको क्या करना है, आपको ये सॉन्ग से एक वर्ड उठाना है, मुझे कॉल करना है और एक नया सॉन्ग बताना है। कॉल कीजिए मुझे 972-235-5555 पे। तब तक एंजॉय करते रहें ये गाना।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: हेलो एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फनेजिया रेडियो और हम यहाँ पे खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं मुझे और अभी जो है शैला जी ने कॉल किया और उन्होंने वर्ड चूज़ किया है सासो। अभी हम प्ले कर रहे थे मेरे हाथ में, तो उन्होंने उससे वर्ड सेलेक्ट किया है सासो और रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनके लिए प्ले करूँ सासो की माला पे। तो बिल्कुल जी, ये रहा आपका सॉन्ग और ये जो सॉन्ग है वो रहा।

अभी अभी हमें बीना जी ने कॉल किया है और उन्होंने सेलेक्ट किया है बाहों एज अ वर्ड और प्ले करने को कहा है बाहों के दरमियां। आई रिमेम्बर ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है ना बाहों के दरमियां, एक काफी रोमांटिक सॉन्ग है अपने टाइम का। सलमान खान और मनीषा कोराला जी हैं और इसमें जो है वो बोल नहीं सकती, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आई थिंक यू गाइज विल लाइक इट।

हेलो एंड वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट और मेरी पूरी तमन्ना और कोशिश है कि मैं आप सबके सॉन्ग रिक्वेस्ट को प्ले करूं. एक दो सॉन्ग बीच में मिस हो जा रहे हैं क्योंकि यू नो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वेरी सॉरी फॉर दैट अगर मैंने कुछ मिस किया हो. वैसे इसके पहले हम बजा रहे थे सांसों की माला पे और सांस वर्ड से समीर जी ने रिक्वेस्ट किया है हम तुम जो सॉन्ग है उससे कि सांसों को सांसों में ढलने दो. जरा बिल्कुल ही रोमांटिक मौसम हो रखा है, कभी हम बाहों के दरमियां प्ले कर रहे हैं, कभी हम सांसों को सांसों में ढलने का प्ले कर रहे हैं. और इसके अलावा उन्होंने जब तक है जहां सांस में मेरी सांस मिली, तो ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है वो भी रिक्वेस्ट किया है. तो हम अभी फिलहाल सांसों को सांसों में ढलने दो जरा प्ले कर रहे हैं फॉर समीर. आई होप यू लाइक इट.

हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो. मेरा नाम सिमी है एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो. हम यहाँ पे एक गेम खेल रहे हैं विच इज़ रेडियो अंताक्षरी. और हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं और मैं कोशिश और ख्वाहिश पूरी रहती है कि मैं सारे के सारे रिक्वेस्ट लूँ एंड आई एम लविंग इट. यू नो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और लोग इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं. मैं कुछ प्ले कर रही हूँ, कुछ मिस कर जा रही हूँ. अभी अभी दीप्ति जी का कॉल आया है कि उन्होंने जो है मौसम वर्ड से मस्ताना मौसम मस्ताना सजेस्ट किया था, जो कि बिल्कुल ही एप्ट सॉन्ग है फॉर दी टेम्परेचर आउटसाइड और सब कुछ. कितना अच्छा है, शाम है, संडे है, मज़ेदार मौसम है. बट अपेरेंटली जो है उस टाइम कमर्शियल एड आ गया था तो हम पूरा सॉन्ग सुन नहीं पाए थे. तो हम इसको दोबारा सुनेंगे अंटिल वी मूव नेक्स्ट टू एड अगेन. वी शुड नॉट मिस इट.

हाँ जी, मौसम काफी मस्ताना है। आई एम नॉट श्योर अगर आपका रास्ता अनजाना है या नहीं, बट या संडे है, अच्छा मौसम है, तो आप बिल्कुल बाहर जाएं, एंजॉय करें, चाय पिए, बस निकल जाएं घर से, क्योंकि कल से तो वही रोजमर्रा की जिंदगी है। और हमें कॉल आया था रहमान जी से फॉर प्लेइंग द सॉन्ग मन मेरा तुझे क्यों चाहे, तो आई एम प्लेइंग अ बिट ऑफ इट बिफोर वी कम टू एट ब्रेक। आई होप यू लाइक द शो एंड द सॉन्ग।

0: हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो विच इज संडे स्पेशल. हम खेल रहे हैं रेडियो अंताक्षरी और आपको जो भी सॉन्ग बज रहा है आपके रेडियो पे उसे एक वर्ड उठाना है और मुझे एक नया सॉन्ग सजेस्ट करना है. सो आई विल बी प्लेइंग अ सॉन्ग सून. ये मैंने खुद सेलेक्ट किया है क्योंकि अभी तक आई थिंक जितने रिक्वेस्ट थे हमने कवर कर लिया है. वी आर स्टेपिंग इनटू एन एड ब्रेक बट आई विल बी बैक सून, सो स्टे ट्यून्ड.
1: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई in notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
4: Astrology readings for guidance only and results may vary.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
7: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Chicken banana.
13: चिकन बनाना
14: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
15: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
16: Inefficient man.
17: Very complex.
18: Clumsy way.
19: अरे confusion ही confusion है. अबे
2: Disjointed software को यूज करना इतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. कामन एक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
0: And hi, this is Simran Simmi and you're listening to me on Fun Asia Radio 104.9 FM. Abhi studio clock ke hisab se time ho chuka hai 4:34, तो मेरे जाने का वक्त धीरे धीरे पास आ रहा है, बट अभी भी बहुत टाइम है ये गेम खेलने के लिए. और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर लाइकिंग इट. आप मुझे आपको क्या करना है बेसिकली, कि आपको मुझे कॉल करना है जो सॉन्ग आपके रेडियो पे चल रहा है फन एशिया पे, उससे एक कोई वर्ड कोई शब्द उठाना है और एक नया सॉन्ग सजेस्ट करना है जो कि मैं आपको लिए प्ले करूंगी. आई एम सॉरी हम वीकेंड्स को कोई गिव अवेज वगैरह नहीं करते, बट आई थिंक यू नो कभी कभी हमें कुछ गेम यूं ही खेल लेना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग इट, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. सो आई एम गोइंग टू प्ले मैया मैया फ्रॉम द मूवी गुरु. और उठाइए कोई भी शब्द उठाइए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इस सॉन्ग में, और मुझे कॉल कीजिए और बताइए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल. कॉल मी एट 972-235-5555 पे.

हाँ जी, तो हम प्ले कर रहे थे मैया मैया, और इससे मिलता जुलता लोगों ने माहिया बना दिया इसको. नो वरीज, हम माहिया ही बजा लेते हैं. सो दिस इज आज हम माहिया फ्रॉम द मूवी फिजा, स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड करिश्मा कपूर.

हेलो जी, इसके पहले हम बजा रहे थे सॉन्ग मैया मैया, जिससे बहुत सारे कॉल्स आए हैं मुझे, और अभी अभी कॉल किया है रत्ना जी ने। उन्होंने एक शब्द को चुना है विच इज़ कश्ती। बहुत इजी वर्ड नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि वो जो है बहुत ही मस्त सा सॉन्ग लेके आए हैं कश्ती वर्ड से, विच इज़ प्यार की कश्ती में। अगेन ऋतिक रोशन सॉन्ग, एंड आई होप यू गाइज एंजॉय इट। दिस इज़ फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है।

हेलो जी, अभी वक्त हो गया है 4:45 और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। तो अगर आप कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ये गेम खेलना चाहते हैं विच इज रेडियो अंताक्षरी, तो बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए एट 9722355 पे। अभी हम एक सॉन्ग प्ले कर रहे थे प्यार की कश्ती में, जहां से हमने वर्ड उठाया है जो कि बहुत ही ईजी वर्ड है प्यार, और उस प्यार से मैं नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ। आपके पास अभी भी 15 मिनट का टाइम है, प्लीज कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या सुनना है।

हेलो एंड वेलकम बैक। अभी अभी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कॉल आया है फ्रॉम यास्मिन जी, और उन्होंने बताया कि उन्हें मेरा शो बहुत पसंद आ रहा है। और अगर मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं तो बेहद अच्छा लगता है अपना काम करना। किसी को भी अप्रिशिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन रहता है एक तरीके से काम करने का। तो थैंक यू सो मच यास्मिन जी, आपने मुझे कॉल किया। और मैं बिल्कुल आपका गाना बजाने जा रही हूँ, अभी मैं ढूंढती हूँ और फिर मैं बजाती हूँ। तब तक आप ये गाना एंजॉय कीजिए, बहुत ही फेमस सा सॉन्ग है छैया छैया।

वैसे चलने का वक्त तो मेरा भी हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, वक्त का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। यास्मीन जी की तरफ से सॉन्ग का रिक्वेस्ट था, हमें तुमसे प्यार कितना, और मुझे ऐसा लगा कि उनको ये सॉन्ग खासा बेहद पसंद है, तो आई होप कि आप सुन रही हैं और आपको ये सॉन्ग पसंद आए।

हाँ जी, मुझे भी आप लोगों से काफी प्यार है और मैं तो बता सकती हूँ कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। और इसी के साथ ये सेगमेंट, ये 2 से 5 का जो हमारा आज का सफर था वो खत्म होता है। और हम कल फिर मिलेंगे 2 पहर 12:30 से 2:30। मैं हूँ आरजे देसी गर्ल, मुझे आपसे भी बुला सकते हैं। और हम बिल्कुल कल फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझे आज का शो करके बहुत मज़ा आया। आप सबका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कॉल्स आए। और जब मैं शुरू कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि 3 घंटे हैं, 3 घंटे सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अभी मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि अरे सेगमेंट तो ख़त्म हो गया। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको टाइम का पता नहीं चल रहा, आपको वक्त का एहसास नहीं हो रहा, तो समझिए कि आप सही जगह पे हैं, है ना? सो बिल्कुल इसी सेंटेंस के साथ, इसी ख्याल के साथ, इसी फिलॉसफी के साथ हम आज का शो खत्म करते हैं। कल फिर मिलूंगी, टिल देन गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: सब कुछ साफ रख सकते हो,
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
11: क्योंकि ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
13: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
14: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
13: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
12: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
15: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. Faisla Clarity ke saath.
16: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
12: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
16: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
17: Yaar, main thak chuki hoon. Party ke pehle safai, fir party, baad mein safai. Upar se aap to koi madad karte ho nahi. Mere se nahi hoga ye.
18: Arey yaar, bola na. Lekin tumhe sunna hi nahi. Bataya na, jahan party hai, wahi khana hai. Jahan khana hai, wahi party. सिंपल
17: मतलब
18: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में. और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे. अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे. नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी.
15: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन.
19: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
20: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
21: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
22: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
21: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
23: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
24: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
25: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
24: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
26: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है
0: Take it to Honesty Automotive in Plano. Expert diagnostics, maintenance, repairs, honest pricing. Aur haan, competitor quote match bhi. Call 469-298-3870. Pehle gaadi theek karao, fir confidently bolo.
1: Aaja meri gaadi mein baith ja.
2: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: ड्यूड इट्स पेज 3 स्टार्ट विद द बार सिग्नेचर कॉकटेल्स क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं।
4: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट।
9: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
26: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करते हुए इस खूबसूरत सी संडे की शाम में आप सभी का। इस बहुत ही खूबसूरत सी संडे की शाम में दोस्तों साथ रहेगा आपका और मेरा 5 से 8। आप भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, वेगानी, रेडी, फॉगी, गर्मी वाली और आज जैसे बहुत बहुत सुहानी। कैसे भी हो हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल। गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। तो चलिए आज के हमारे शो की शुरुआत करते हैं। कुछ थीम लेकर आई हूँ आपके लिए, गाने सुनिए और गानों पर से अगर आपको थीम का अंदाज आता है गिव मी अ कॉल 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा एंड ये है आपका अपना शो ये शाम मस्तानी। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ट्रैक ऑफ आवर शो एंड हियर इट गोज़।

धुरंधर द रिवेंज से दोस्तों सुने थे आप ये बहुत ही अमेजिंग सा गाना। ऐसे ही गाने चलते रहेंगे यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर। और आपको बताना है मुझे कि क्या होने वाली है हमारे शो की थीम। पहला गाना तो आपने सुन लिया दोस्तों, तो चलिए दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे गाने के गाने को सुनते ही आपको पूरी की पूरी शो की थीम पता चल जाएगी और जल्दी से जल्दी मुझे कॉल करके बताइएगा। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। अगर आप घर से निकले हैं बाहर तो 104.9 एफएम को ट्यून इन ही करना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम यहाँ पर हो चुका है रात के ठीक 8 बजे तक। तो प्लीज ट्यून इन टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा और आपका अपना शो है ये शाम मस्तानी।

त्यमेव जयते से। दोस्तों आप ये गाना सुन रहे थे दिलबर दिलबर। आई एम श्योर आप सभी को अभी तक तो थीम का अंदाजा आ ही गया होगा। एक कॉल मुझे ऑलरेडी आ चुका है और उन्होंने बिल्कुल सही थीम की जानकारी मुझे दे दी है, बट फिर भी आई एम लुकिंग फॉर मोर कॉलर्स। और सही से सही आपको मुझे थीम की थीम के बारे में बताना है। 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो। क्या है आज के हमारे शो की थीम? दो गाने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला गाना आपने सुना था तम्मा तम्मा, दूसरा गाना अभी ये सुना आपने फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते विच इज कॉल्ड दिलबर दिलबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। इसके बाद तो आई एम श्योर जो भी गाने सुनते भी नहीं होंगे उनको भी थीम का अंदाजा और पता चल जाएगा। 9722355555।

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

जी हाँ, हम ओ के जानू से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना। वेल, दोस्तों इंतजार की घड़िया हो चुकी है खत्म। मुझे काफी कॉल्स आ गए और बिल्कुल सही जवाब मिल चुका है मुझे मेरे थीम के बारे में। मलिक जी का कॉल आया था, राकेश का कॉल आया था, नेहा का कॉल आया था और उन्होंने सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आज के गाने ऐसे हैं रीमिक्स। जी हाँ, पुराने गानों में जब नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना बहुत ही अमेजिंग तरीके से बाहर आता है और उसे आजकल हम रीमिक्स कहते हैं। तो ऐसे ही रीमिक्स गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। बट उसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल आया, मैं डेफिनेटली उनका जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर ऑन एयर पे। मिलिन जी का कॉल आया था और मिलिन जी ने मुझे क्या एक ऑब्जर्वेशन बताया है, वो ऑब्जर्वेशन सुन के और उनका एक उनकी जो बारीकी से वो जो गाने सुन रहे थे उनका वो बारीकी सुन के मुझे बहुत ही ताज्जुब हो गया। वो बोल रहे थे कि आप ऐसे गाने चला रहे हो जिसमें वर्ड्स डबल डबल हो रहे हैं। जैसे कि पहला गाना मैंने जो चलाया था तम्मा तम्मा लोगे, तो उसमें तम्मा तम्मा वर्ड इज कमिंग ट्वाइस एंड वन आफ्टर दी अदर। उसके बाद सेकेंड सॉन्ग वॉज दिल बर अगेन, द वर्ड वॉज रिपीटिंग। सेकेंड थर्ड सॉन्ग वॉज हम्मा हम्मा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था इट वॉज रियली ग्रेट ऑब्जर्वेशन। और देखिए उनके कोइंसिडेंस से मैंने तीनों गाने भी ऐसे चला दिए कि उनके ये उनको ये सोचना लाजमी होता है कि भाई ऐसे ही गाने चला रही है अपूर्वा जी। कभी कभी ना दोस्तों आप दिमाग के घोड़े इतने ज्यादा दौड़ाते हो और इतना कुछ अगड़म तिकड़म कुछ तो भी लेकर आते हो। बट आई मस्ट से मिलिन जी, इट वॉज रियली इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन। बट अनफॉर्चुनेटली आपका ये ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। मैं ऐसे गाने चला रही हूँ जहाँ पर रीमिक्स, जी हाँ, पुराने गानों में जब नए म्यूजिक का तड़का आता है जो गाने रीमिक्स बन के बाहर आते हैं वैसे रीमिक्स गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। तो ऐसे ही एक अच्छे रीमिक्स गाने की मुझे रिक्वेस्ट आई है मलिक साहब से, तो चलिए आपको पहले वो गाना सुनवा देती हूँ और फिर कुछ गाने मेरे आपके पसंद के। अगर आपके पसंद का रीमिक्स गाना आपको सुनना है 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो।

ऑलराइट दोस्तों, रिक्वेस्टों की लाइनें तो वैसे लग चुकी है, बट अभी हमें बहुत ही कम वक्त बचा है ब्रेक पे जाने के लिए, तो मैं अभी क्या करती हूँ ना, एक छोटा सा गाना मेरे पसंद का चला देती हूँ और उसके बाद आपके जो रिक्वेस्टेड गाने हैं वो चलाऊंगी यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। कीप द कॉल्स कमिंग इन। रिमिक्स गाने चल रहे हैं यहाँ पर आज आपके शो में, जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। अगर आपको भी आपके पसंद का रिमिक्स गाना रिक्वेस्ट करना है, डेडिकेट करना है, तो 9722355555 है वो नंबर जो आपको मुझ तक पहुंचा सकता है। ये अगला गाना सुनिए, उसके बाद जाएंगे हम थोड़े से कमर्शियल ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद यू गई और यू आए।

0: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
1: 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
2: Oh, Haseena Zulfon Wale Jaane Jahan.
3: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज़ ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। कॉल अमरीन एट 214-909-6601
1: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून, लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को।
3: Umbreen Salon. Style that moves with you.
4: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
5: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
6: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माय स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
7: डलास की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

डालस की धड़कन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर आप सब लोगों का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 5 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। आई एम श्योर आप सब लोग लवली वेदर एंजॉय कर रहे होंगे, और लवली वेदर एंजॉय करने के साथ साथ अगर आप अपनी गाड़ियों में घूम रहे होंगे तो आपका हमारे साथ देना बहुत जरूरी है। तो 104.9 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है एंटरटेनमेंट का भरपूर प्रयोग। बिल्कुल एंटरटेनमेंट यहाँ पर 24/7 365 डेज अ ईयर चलते रहता है। हम आपके लिए लेकर आते हैं डिफरेंट भिन्न प्रकार के आरजेज जो लाते हैं आपके लिए बहुत ही अलग अलग किस्म के शोज। तो आप इन शोज को सुनकर बहुत ज्यादा यू नो एंटरटेन्ड होते हैं, आपको बहुत ज्यादा आपके नॉलेज में हम कुछ ना कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कुछ न्यूज की, कुछ बॉलीवुड की गॉसिप्स बताते हैं, कुछ अच्छी अच्छी न्यूज बताते हैं। सो एवरी वे ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ हम आपको एंटरटेन्ड और इन्फॉर्म्ड रखते हैं। तो भाई स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 5, ब्रेक की बात, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम गाने सुन रहे हैं ऐसे पुराने गाने जिसमें नए म्यूजिक का तड़का लग के गाना निखर के बाहर आता है, और ऐसे गाने को आजकल हम कहते हैं रीमिक्स। जी हाँ, पुराने गानों के जो नए अभी नए जमाने में जो रीमिक्स बने हैं वैसे गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई गाना आपके जहन में आता है या फिर आपकी सुनने की इच्छा आकांक्षा मनोकामना है, दीजिए मुझे कॉल। अभी आपको लेकर जा रही हूँ फिलहाल सौरभ के रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। एंजॉय दिस ट्रैक।

का सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिधि दोस्तों आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी हाउसफुल। दोस्तों अगर इफ यू नीड फाइनेंशियल गाइडेंस माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाई सी पी ए सुधीरपाई ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल इस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम और ऑल्सो यू कैन कॉल देम द नंबर टू कॉल इज 4697021272 फॉर मोर डिटेल्स। अगला गाना मरियम की रिक्वेस्ट पर आप सभी को सुनवा रही हूँ रीमिक्स गाने चल रहे हैं यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर ये है ये शाम मस्तानी विद आरजे अपूर्वा।

झुमका व्हाट झुमका। जी हाँ, अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज में सुने थे दोस्तों आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आई होप मरियम आपने आपका रिक्वेस्टेड गाना एंजॉय किया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस गाने की खासियत क्या है कि इतने सारे रिमिक्स बन रहे हैं बॉलीवुड में, बट इस गाने में जो रिमिक्स का वर्जन इन्होंने बनाया है ना, विच इज वेरी इनोवेटिव। ये कुछ भी जगह से, किसी भी जगह से ये मुझे रिमिक्स नहीं लग रहा है। है एक्चुअली ये जो वर्ड्स है, वर्डिंग्स है इसमें, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये गाने, ये वाली जो लाइन्स है वो है पुराने गानों की है, बट बीच बीच में इन्होंने जो उनका एक अलग ही वर्जन डाला है ना, आई रियली रियली लव्ड दिस सॉन्ग एंड द वे दे हैव मेड इट एंड संग इट एंड कोरियोग्राफ्ड इट एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड इट। सिनेमेटोग्राफी भी इतनी प्यारी है इस गाने की, रणवीर एंड आलिया लुक्ड अमेजिंग एंड द कलर्स, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एंड सो कलरफुल दिस सॉन्ग इज टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन, टेकन फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रिमिक्स गानों का सिलसिला चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका भी कोई रिमिक्स गाना फेवरेट है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। ये शाम मस्तानी सुन रहे हैं आप आरजे अपूर्वा के साथ।

again, one more banger remix taken from the movie Simba. Well, भाई दोस्तों, इस गाने में तो आपको ये समझता है कि एक लड़की को रिझाने के लिए लड़के को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। सीटी मारनी पड़ती है, डांस करना पड़ता है, गाने गाने पड़ते हैं, आंख मारना पड़ता है। बट आपको एक सही बात बताओ कि अगर आपको लड़की को रिझाना है, उसको पटाना है या फिर उसको अपना बनाना है, तो गोल्ड एंड डायमंड्स इज दी ऑप्शन फॉर यू। और इसी गोल्ड एंड डायमंड्स को खरीदने के लिए आपको कहीं जाना है तो आपको मैं बताती हूँ ना भाई, शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, डैलस ऑन प्रेस्टो रोड इन फ्रिस्को पे ये लोकेटेड है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट। तो ये जो आपकी स्पेशल वन है आपके लाइफ में, उसको रिझाने के लिए आपको ना गाना बोलने की जरूरत है, ना डांस करने की जरूरत है, आंखें मारने की, ना फिर सीटी बजाने की जरूरत है। बस इनको यहां पर लेके जाइए मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पे। फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, देयर डायमंड कलेक्शन ब्लेंड सुपीरियर quality with timeless design, perfect for engagements, anniversaries or just celebrating love. You can download their mobile app now for more details. Remix के गाने चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। जब पुराने गानों में नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना ऐसे ही निखर के बाहर आता है और इसको कहते हैं हम रीमिक्स। तो ऐसा कोई रीमिक्स गाना आपका फेवरेट है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

बाटला हाउस से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना इन द वॉइस ऑफ नेहा कक्कर एंड बी प्राक। रीमिक्स गानों का जमाना है दोस्तों, रीमिक्स गाने सुनवा रही हूँ आप सभी को। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट रीमिक्स गाना है गिव मी अ कॉल 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर। अगर आपकी पसंद का सुना जाता है तो आप कॉल कीजिएगा, नहीं तो मेरे पसंद के तो गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ जैसे कि ये वाला गाना।

इस गाने के बाद दोस्तों हम बढ़ रहे छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी, और रिमिक्स गानों का सिलसिला चल रहा है यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। ब्रेक के बाद मैं यू गई और यू आई।

जिंदगी के कई रंगों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए 104.9 FM फन एशिया रेडियो। दोस्तों, स्टूडियो की कड़ी में हो चुके हैं 5 मिनट्स पास्ट 6 और ब्रेक के बाद आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे पूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 5 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जहां पर मैं आपकी शाम मस्तानी दीवानी तूफानी बेगानी रेनी फॉगी कैसी भी हो उसको बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल बनाती हूँ विद द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आई प्ले हियर फॉर यू। कुछ गाने मेरी पसंद के, कुछ गाने आपके पसंद के। और आज तो भाई आपके और मेरे पसंद का तो धमासान जो चल रहा है वो बहुत ही कमाल का चल रहा है, क्योंकि गाने आपको ऐसे सुनवा रही हूँ रीमिक्स, जिसमें पुराने गानों में जब नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना कैसे निखर के बाहर आता है, ऐसे वाले गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई गाना आपके जहन में है या फिर दिलो दिमाग में आ रहा है या फिर ऐसा गाना सुनने की आपकी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो। जो भी गाना आप रिक्वेस्ट करेंगे रीमिक्स आपकी यहाँ पर जरूर प्ले किया जाएगा आपके लिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी बताइए। मीन टाइम आपको लेकर जा रही हूँ अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। ये गाना रिक्वेस्ट किया था दीप्ति जी ने, आई होप यू विल लव इट।

रीमिक्स गानों का सिलसिला चल रहा है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने शो में, जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। पुराने गानों में जब नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना ऐसे ही अमेजिंग तरीके से रिमिक्स बनकर बाहर आता है। तो ऐसे ही रिमिक्स गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो। ये जो अगला गाना है जिनकी रिक्वेस्ट आई है उनका नाम है पाली, सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली, आई डोंट वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, बट येस इस गाने की रिक्वेस्ट आई है और गाना है सैयारा। वेल देखा जाए तो ये गाना भी एक पुराने गाने का ही रिमिक्स है और पूरी की पूरी मूवी इस शब्द पे, सैयारा पे बन गई है। एंड ये गाना इज एक्चुअली अ रिमिक्स सॉन्ग ऑफ द ओल्ड सैयारा सॉन्ग। अगर आपने नहीं सुना है ओल्ड सॉन्ग तो यू कैन गो बैक एंड चेक इट ऑन यूट्यूब एंड आपको डेफिनेटली उसका पुराना वर्जन भी मिलेगा। तो चलिए भाई, ये पुराने गाने का जो रिमिक्स बनकर बाहर आया है और इतना वर्ल्ड फेमस हो चुका है सैयारा गाना, वो आप सभी को सुनवा देती हूँ। रिक्वेस्ट आई है इस गाने की भी, सो लेट्स हियर इट।

क्रिएटेड गुड इम्पैक्ट ऑन द जनरेशन और बहुत ही बिग ब्लॉकबस्टर मूवी थी ये, जिसका नाम था सैयारा। आहान पांडे और अनित पड्डा की डेब्यू मूवी थी, विच वॉज सैयारा। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले बता दूं द ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। इट इज लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स। देयर एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। फॉर डिटेल्स यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 972-245-5626 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज ड्रीम होम मॉर्गेज .com।

बिजूरिया गाना सुन रहे थे आप दोस्तों, टेकन फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। वरुण धवन और यू नो जानवी कपूर और रोहित सराफ और सानिया मल्होत्रा पे पिक्चराइज थी ये मूवी। अगर नहीं देखी आपने तो देख लीजिए, हल्की फुल्की है, नेटफ्लिक्स पे है, एक्चुअली ऑलरेडी आ चुकी है, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी। वेल, अगले एक बहुत ही प्यारे और पुराने गाने की रिक्वेस्ट आई है हमको अकबर जी से, और वो ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी बहन को जो कि डालस विजिट कर रही है, और उनके बहन का नाम है मौसीना जी। तो मौसीना जी, वेलकम टू डालस एंड आई होप यू आर लविंग द यू नो एंजॉयिंग द लवली वेदर इन डालस। अभी तक तो फुल ऑन अच्छा वेदर चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं शुरू हो चुकी है, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दैट वेदर एंड एंजॉयिंग लिसनिंग टू आवर फनीशिया रेडियो। तो चलिए, अकबर साहब की तरफ से मौसीना जी को ये वाला गाना डेडिकेट करते हैं। गाना बहुत ही प्यारा है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। आई होप यू विल लाइक दिस सॉन्ग एंड द वर्जन दैट आई एम प्लेइंग फॉर यू। एंजॉय।

ब्यूटिफुल। आई होप आपने ये गाना एंजॉय किया होगा। अगले गाने की भी रिक्वेस्ट आई है, बहुत ही पर्टिकुलर गाने की रिक्वेस्ट आई है कलीम जी की, जो कि सुनना चाहते हैं मेरे रश के कमर गाना इन द वॉइस ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, ये गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए इस गाने की तरफ बढ़ते हैं, और इसके बाद कुछ और गाने, कुछ मेरे कुछ आपकी पसंद के।

0: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
1: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 Or visit astrologerishwar.com.
2: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
3: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
4: मैंने नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदना पसंद है जो एक दूजे दिन आल काम ना करे
5: मचा आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ऐसे
6: मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे अपनी प्राइवेसी का कोई चिंता नहीं बाबा
7: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं Yes, your entire business Zoho One is easy to use साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है कॉमन एक सॉफ्टवेयर एक Zoho One get your free trial at zoho.com/one
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
12: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Fun Asia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Fun Asia Radio for spreading the word.
13: नेशन का फन स्टेशन फन एशिया रेडियो

स्टेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 5 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ जुड़े रहते हैं। आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए एवरी संडे की शाम आपके लिए कुछ नया कुछ अनोखा कुछ नया कुछ वैरायटी लेकर आने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। और इसी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना के साथ आपके लिए आज लेकर आई हूँ ऐसी एक सेगमेंट जिसमें आप पुराने गानों में नए म्यूजिक का जब तड़का लगता है तो गाना कैसे निखर के बाहर आता है, वैसे रीमिक्स बॉलीवुड में बने हुए रीमिक्स गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ ये अगले गाने की तरफ, बहुत ही अमेजिंग गाना है, उसके बाद आने वाला है आपके लिए एक छोटा सा गिव अवे, तो प्लीज ट्यून इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

such a beautiful rendition of a remix song जहाँ पे आशा भोसले जी की आवाज को अगर कोई justice दे पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुनिधि चौहान है. Amazingly choreographed, amazingly put together song in this movie called Once Upon a Time in Mumbai, जहाँ पे आपने देखा था अजय देवगन को, कंगना रनौत को, इमरान हाशमी को और प्राची देसाई को. 200 amazing movie थी, अगर आपने नहीं देखी है तो please please give it a watch. Ajay Devgan was a dream to watch in this movie. Well, जैसे कि वादा किया था, वादे के मुताबिक आपके लिए लेकर आ गई हूँ गिव अवे. दोस्तों, इफ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विथ अ देसी ट्विस्ट, यू कैन हेड टू फन पिज्जा किचन वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. So now, here is your chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a simple question, जो कि मैं यहाँ पे पूछने वाली हूँ आप सबके लिए. अगर आपने मेरे सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो आप जीत सकते हैं Fun Pizza Kitchen की तरफ से $10 का gift card, free, free, free. So, आपको बता देती हूँ दैट फॉर द ऑल वेजी लवर्स यू कैन ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा विच इज पैक्ड विद द टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक. एंड फॉर द मीट लवर्स यू कैन ट्राई द तंदूरी चिकन पिज्जा विच इज प्योर स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बर्ड्स. So, dosto, whether you like it bold or beautifully balanced, there is a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For more details, you can visit their website, which is funpizzakitchen.com. और अभी बारी है मेरे सवाल की. हमारा जो नंबर है वो पहले आप अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए 9722355555 और रेडी हो जाइए मेरे सवाल के लिए. सही जवाब देने वाले को मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. आपका सवाल ये है, मेरा सवाल ये है आपके लिए कि ये जो अगला गाना मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ, रिमिक्स गाना, अगेन वंस अगेन इट्स अ रिमिक्स सॉन्ग, आपको मुझे बस इतना बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है. ये जो रिमिक्स गाना मैं यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ, आपको मुझे बस इतना बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है. 9722355555.

0: अमेजिंग अमेजिंग गाना था दोस्तों ये, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डांस किया है। आशा भोसले जी का गाना था ये, एंड इसको गाया है ज्योतिका टांगरी ने, और ये गाना है फ्रॉम द मूवी टोटल धमाल। किसी कॉलर का मुझे कॉल आया और वो बोल रहे थे कि धमाल मूवी का है, बट नहीं भाई, धमाल का नहीं था, सिर्फ टोटल धमाल का था। और मुझे सही सही जवाब और सबसे पहले कॉल किया था सिया जी ने, सो सिया जीत चुकी है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, फ्री फ्री फ्री, सो तालिया सिया के लिए। बल्ले बल्ले हो गया है सिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड विनिंग दिस अमेजिंग गिव अवे फ्रॉम फन पिज्जा किचन। वेल, फन की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो कम तो नहीं होनी चाहिए, तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ अगले रिमिक्स गाने की तरफ।
1: Chill, I should drop it low, man.

आई थिंक ये ऐसा रिमिक्स वर्जन बनाया है दोस्तों, जिसमें ओरिजिनल गाने में भी वही हीरो था और रिमिक्स गाने में भी वही हीरो था। मैं बात कर रही हूँ सैफ अली खान की। जी हाँ, ओले ओले गाना पुरानी मूवी में ये दिल्लगी में भी सैफ अली खान थे, और ये नया मूवी जो है जवानी जाने मन, इस मूवी में भी सैफ अली खान पे ही ये गाना पिक्चराइज है ना भाई, डबल धमाका। दोस्तों मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं आपके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द लव एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM ऑल द टाइम। सब लोगों के कॉल से मुझे ये पता चल रहा है कि आपको आज का ये रिमिक्स वाला जो थीम है वो बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द लव ऑल द वे। आपके इसी प्यार से तो हमें यहाँ पे आने की इंस्पिरेशन मिलती है, एक मनोकामना हमारी होती है कि यहाँ पर आकर आपके लिए कुछ वैरायटी लेकर आए, कुछ अलग म्यूजिक आपको हमेशा सुनवाने की मेरी तो भी एटलीस्ट यही कोशिश रहती है, और हमारे सारे फनिशिया की आरजेज की भी यही कोशिश रहती है, जो कि यहाँ पर आपके लिए ये रेडियो स्टेशन चलते रहता है 24/7 365 days a year। एंटरटेनमेंट की बिल्कुल कमी नहीं होती है, पूरा का पूरा टोटल धमाल एंड टोटल एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा ओनली ऑन फनिशिया नेटवर्क पर। अभी तो अभी तो लैंग्वेज की भी कुछ बैरियर नहीं है, आपको हिंदी रेडियो स्टेशन अगर सुनने हैं तो आप फनिशिया रेडियो 104.9 और रेडियो कैरावान 104.1 सुन सकते हैं। अगर आपको तेलुगु रेडियो स्टेशन सुनना है तो आप रेडियो संगम सुन सकते हैं। पंजाबी लिसनर्स के लिए अपना पंजाब इज द रेडियो स्टेशन दैट यू कैन लिसन टू, एंड ऑल्सो वनक्कम एफएम इज ऑल्सो देयर। सो भाषाओं का कोई भी कंसर्न नहीं है, आपको जिस भी भाषा में आपका रेडियो सुनना है तो इस सारे फनिशिया नेटवर्क के अंदर इतने सारे रेडियो स्टेशन खुल गए हैं। सो वी ऑलवेज मेक श्योर दैट हम हमारे लिसनरशिप की हमेशा खातिरदारी करें। इस मामले में हम बहुत ही आगे हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन लिसनिंग टू फनिशिया रेडियो। अगर आपका साथ हमारे साथ होगा तो आपके लाइफ में म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का बिल्कुल कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी हमारी। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ।

मसक अली ओरिजिनल गाना फ्रॉम द मूवी दिल्ली 6 का ये रिमिक्स वर्जन बनाया गया था, विच इज कॉल्ड मसक अली 2.0। ऐसे ही गाने चलते रहेंगे यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। और अगला गाना जो रिमिक्स बना है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग जिसमें रवीना टंडन दिखाई गई थी और अक्षय कुमार पर ये गाना पिक्चराइज था। आई एम श्योर आप सभी को अंदाजा आ ही गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट टिप टिप बरसा पानी।